0: ब्रश और बीरोने की स्किन और इमेज लाइट था डैमेज एक डस्ट स्किन के कयो आउट पर यू के तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जहिए आए चार रंग की खूबियों एक कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जल्द के रिस्टोर करे इमेज नमी की लॉक करे एक चार रंग की खूबियों जिंद में फाइन लाइन एक झीरन की घट कर एक रिकर्स की घट करे सिर्फ की ईवन में जिंद के बनाए नरम मुलायम एंड ड्राई उनका जरूरत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसे हर कतरे साथ चेहरे के मिले तो दिल की खूबसूरती हर हर में रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट वॉइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सर कॉस्मेटिक्स
1: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी हाने पहिजी स्किन के लियो एक नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट एंड ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वती का आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर दी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप वाइट एज ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़ सीने जी जलन खटियूं उघड़ायूं भुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे इस्तेमाल करियो शिफ़ा मैदा कोरस जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे शिफ़ा मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली राब्ते जे लाइ फोन करियो 0326638879 0312401287 शिफ़ा मैदा कोरस सेहतमंद मैदो सेहतमंद ज़िंदगी
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
3: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
5: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
1: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे यादि रखंदा दायमी बुखार नज़लो ज़ुकाम बदन में सूर बेचे कमजोरी मलेरिया मुदे जो बुखार टीबी बदहज़मी मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे
6: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3445
3: मातली ऐं आस पास जी आवाम लाइ खुशख़बरी मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9 खां 6:30 वगे शाम ताई। नोट असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नजद अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086313।
4: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 0300296243। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुब्तला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-24-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम।
5: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
5: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
1: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
0: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
2: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
2: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
0: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है।
4: सुपर वाइट।
5: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
6: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: याद रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए 2347।

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशख़बरी। छा अवां चाहियो था अवां हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-29। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
4: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि

0: रेडियो जीएफए मातली बदीन
1: बस पो हाने खणो फोन ऐ पेंजे इश्तिहार हलाइण लाए
0: असान जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा
1: 0331252578 6।
0: जी हां, 2315525786
1: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: फिल्म, हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अरे न खुश और बीरोनो की स्किन हर इन्हीं जलाए छा डैमेज ए डल स्किन के कयो आउट पर बीरो किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम।

0: जंहिंमें आहिनि चारनि जूं खूबियूं ऐं कोच कैसेट फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रीस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ 3 ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾो गॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिं जी हर कतरे सां चेहरे खे खूबसूरती हर हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
1: अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: छा तव्हां जोड़नि जे सूर पुठनि जी तकलीफ़ कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि पुठनि कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3404-287 ख़ात्माए दर्द कोरस सूर खां छुटकारो सुकून भरी ज़िंदगी
3: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो
4: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी
3: औलाद जो न थियणु औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियणु कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
5: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230
1: खुशखबरी खुशखबरी अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे यादि रखंदा दायमी बुखार नज़लो ज़ुकाम बदन में सूर बेचे कमज़ोरी मलेरिया मुदे जो बुखार टीबी बदहज़मी मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे
6: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244
3: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खु़शख़बरी मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9 खां 6:30 वगे शाम ताई। नोट असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नजद अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
7: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: रखे हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream,
5: a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
6: यमनी हुसैन जे सऊदी अरब जे वडे ऑयल कंपनी आरामको में रिफाइनरी ते हमलो जी दावा हुसैन जो चवण आए त सऊदी अरब पारां कमन जे राजधानी सना ऐं बियन हमलन जे जवाब में आरामको ते हमलो कयो। बे तरफ सऊदी इख़्तियारनि यमनी हुसैन जी दावा बेबुनियाद करार ॾेई छॾी। सिंध यूनिवर्सिटी जामछोरो में तालीमी साल 2027 जी बैचलर डिग्री प्रोग्राम में प्री एंट्री टेस्ट वरती पई वञे। पहिरें मरहले में टेस्ट में सिंध जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि मां 8,000 खां वधीक उमेदवार हिसो वठी रहिया आहिनि। बैचलर डिग्री प्रोग्राम लाइ 19,416, मास्टर ऐं बीएस 3 सालनि लाइ 3,095 उमेदवार रजिस्टर कराई। ऐं सकरंड में जवाबदार नींगर खे नशो ॾेई मुबैना बदफेली जो निशानो बणाए फिटो करे छॾियो। खानज़ादा पाड़े जे रहवासी नींगर खे बदफेली जो निशानो बणाए 0.8 वटि फिटो कयो वियो। वारसनि चयो आहे त नींगर राति खां गुम हो, माण्हुनि नींगर खे खणी आया, ॿुधायो त 0.8 वटां मिलियो आहे। नींगर ते तशदुद बि थियल आहे, जवाबदारनि गिरफ़्तार करे इंसाफ़ फराहम कयो वञे।
7: आपको मालूम है कि छाती का कैंसर एक खतरनाक और जानलेवा मर्ज है और पाकिस्तान में हर 9 में से एक खातून ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो सकती है, लेकिन बरवक्त तशखीस और इलाज से कीमती जाने बचाई जा सकती हैं। इसके लिए खवातीन हर महीने अपना जिस्मानी मुआयना खुद करें और सीने या इसके अतराफ में गिल्टी या किसी भी किस्म की गैर मामूली तब्दीली महसूस करें तो फौरन अपने डॉक्टर से राब्ता करें ताकि बरवक्त।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिपचिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में।
5: आप प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
8: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
9: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
10: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
9: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
10: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
9: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
10: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
9: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
11: सुपर वाइट।
12: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
13: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
12: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
13: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
12: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
14: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजनि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
13: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
4: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो,
3: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331-2525-786।
3: जी हा, 3135-2576।
4: GAFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

चाहे आर्ट्स क्रीम हेयर कलर पंहिंजे पसंदीदा रंग सां पंहिंजो अंदाज बणायो वधीक दिलकश ऐं वधीक स्टाइलिश पार्टी हुजे ऑफिस हुजे या के खास मौके जी तयारी हर लम्हे पंहिंजो बेहतरीन अंदाज जाहिर करियो आर्ट्स क्रीम हेयर कलर सां पंहिंजी शख्सियत में आणियो।

शहर से पता करते हैं लोगों के दिलों को, शहर से पता करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. You are tuning into Radio Video FM 88R. साथ ही साथ प्यारे से चल रहा मीठी सी आवाज, मासूम से दिल सूट सी ऐसी परफेक्ट पर्सनैलिटी, खुश मिजाज अंदाज मुझे रहते हैं आरजी रुखसार सिंध की आवाज। हेलो, कैसे हैं आप? आई होप सो गुड। जहां जहां भी मौजूद है बिल्कुल टिप टॉप से कूल, एक साउंड एकदम स्ट्रांग हेल के साथ मुझे सुन रहे हैं। जहां जहां भी मौजूद है बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद है और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरी पूरी तैयार है, पूरी पूरी एक बजे तक, क्योंकि आप सुन रहे हैं सिंध की गुलजार है। पास बाय सुपर वाइट बाय अक्सर कस्मर जो कि आप सुनते हैं डेली।

प्रोग्राम में हम सबसे पहले वक्त की बात करते हैं, तो जो वक्त हुआ जाता है 11:17 जो कि पाकिस्तान का मियारी वक्त है। आप तमाम तो लोगों की गलियों में बज रहा है और इसके अलावा वो लोग जो देख सकते हैं ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में हो, ट्रक में हो, रिक्शा में हो, कार में हो, बाइक पे हो, जिस पर भी जहां भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी। बदल देना और अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीच को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए, ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बगल जगह एरिया में मौजूद है तो वक्त एरिया में मतलब वो तमाम तो लोग जो लोग सल रहे हैं उसके अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून, और जो लोग लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बोल रहे हो कुछ बुलाओ कुछ नहीं कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारी बेस्ट विशेज आप लोगों के लिए कि आप अपने हर काम में कामयाब।

तो प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ है, सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, और सारी बातें जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं वो सारी बातें मैं आपसे करूंगी। लेकिन उससे पहले हम प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना, और इसी पहले गाने के साथ प्रोग्राम को हम आगे लेके जाएंगे और आपको बताएंगे हम क्या करने वाले हैं। क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय एक्स एंड कॉस्मेटिक्स।

ओके जी, प्रोग्राम में हम चलते हैं आगे एंड इसके साथ साथ जी आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं प्रोग्राम में तीन तरीकाकार से। तो आप मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं, सिंपली मैसेज बाय उठाइए, राइज मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 8881 पे। कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/GFM88 पेज के ऊपर आपको मिलती है लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग। जी लाड़काना FM 88.8 के पेज के ऊपर भी आपको मिलती है लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग। उसके नीचे आप कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं एंड कमेंट्स को ड्रॉप करने के साथ साथ उस ऑडियो स्ट्रीमिंग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे फर्दर अपने पेजेस, प्रोफाइल्स और ग्रुप्स में, सो दैट हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए और उनको बता पाए कि उनकी जिंदगी गुलजार है और वो कैसे है सॉफ्ट सुपर वाइट के बहुत अच्छे प्रोडक्ट और सुपर वाइट के ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो कि आप लोगों के लिए बनाए गए हैं, आपको खूबसूरत बनाने के लिए बनाए गए हैं। तो अभी तक अगर आपने सुपर वाइट के प्रोडक्ट यूज नहीं किए हैं तो बहुत बड़ा नुकसान किया है अपना। तो अगर आप अपना अभी तक नुकसान कर रहे हैं तो नुकसान को फायदे में तब्दील करें और सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू करें, क्योंकि सुपर वाइट के प्रोडक्ट बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि अक्सर कॉस्मेटिक्स वाले आप लोगों के लिए बनाते हैं और आप लोगों के लिए लेकर आते हैं।

क्रीम्स के अलावा जी इनकी क्रीम्स भी आती है, विटामिन सी की ब्यूटी क्रीम और सुपर वाइट की स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम आती है जी, और सुपर वाइट की टर्मेरिक ब्यूटी क्रीम आती है, सुपर वाइट की एंटी फ्रेकल क्रीम आती है जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सुपर वाइट की आई फ्री एक्नी क्रीम भी आती है उन तमाम तो लोगों के लिए जिनके फेस के ऊपर एक्नी रहती है और एक्नी खत्म नहीं होती है, तो एक्नी खत्म होगी इसके इस्तेमाल से। इसके अलावा जी सुपर वाइट का वाइस कोलेजन ब्यूटी सोप भी आता है जी, इनके बूस्टर्स भी आते हैं, सीरम्स भी आते हैं जो कि आप क्रीम में एड करके क्रीम के रिजल्ट को डबल इनहेंस कर सकते हैं। सो गाना हमारा ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो चुका है, सो हम चलेंगे नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ भी, एंड जब हम नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ जाएंगे तो नेक्स्ट सॉन्ग हमारे पास होगा बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल जिसको हम सुनेंगे, एंजॉय करेंगे और साथ साथ आगे चलेंगे। और सुपर वाइट की राइस कोलेजन ब्यूटी क्रीम भी आती है जो कि आपको देती है ग्लास स्किन।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अरे न खुश और बीरोनो की स्किन हर इन्हें जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जहे में आहिन चार रंग की खूबियों आई कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे आई चावर जी खूबियों जल्द में फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कर आई रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिल में जल्द के बढ़ाए नरम मुलायम एंड ब्राइट उन गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैन जी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानो सुबुह जो 10 खा रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
2: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
4: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए 2347 बट्टी

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
5: सुनते रहो GFM 90.4।

अलावा आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं 888-1-BASE, तो जरूर करें। इसके अलावा जी सुपर वाइट के प्रोडक्ट जो कि आपको बना रही हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत, बहुत ज्यादा हेल्दी और स्किन दे रही हैं आपको, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं वो हम जरा रोशनी डालते हैं जी। और सुपर वाइट के तमाम प्रोडक्ट्स वैसे तो बहुत ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट हैं, और सुपर वाइट के प्रोडक्ट जो कि यूज करने से आपको मिल रही है वो खूबसूरती जो कि पहले कभी भी न थी। सुपर वाइट की वाइटामिन सी क्रीम वो तमाम तो लोग यूज कर सकते हैं जिनके फेस के ऊपर बहुत ज्यादा डलनेस, बहुत ज्यादा छाइयां, बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन, ये सब कुछ हो गया है, तो वो यूज कर सकते हैं इसको। और यूज करने के बाद देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरती आएगी, और खूबसूरती ऐसी आएगी कि आपको पता चलेगा, और सिर्फ आपको ही नहीं आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं सबसे पहले वो आपकी खूबसूरती की तारीफ करेंगे कि हाँ जी ये जो खूबसूरती है ये आई कैसे है, किधर से आई है, इतने खूबसूरत तो आप पहले कभी भी न थे, इतनी अट्रैक्शन कभी भी आई नहीं आपसे। तो ये सारी चीजें आपको सुनने को मिलेंगी जब आहिस्ता आहिस्ता आपका हुस्न चमक तक जाएगा, तो ये कुछ होगा। अच्छा, इसके साथ साथ जी वाइटामिन सी की ब्यूटी क्रीम, सुपर वाइट की वाइटामिन सी ब्यूटी क्रीम जिसमें लेमन एक्सट्रैक्ट मौजूद है, नीम एक्सट्रैक्ट मौजूद है, ये वाइटामिन सी क्रीम जो कि इसमें 7-in-1 ब्यूटी है, यानी कि 7 आपको 7 ब्यूटी टिप्स के साथ साथ, मतलब इसमें बहुत सारी ऐसे अज्जा मौजूद हैं जो कि आपकी 7 स्किन की मेजर प्रॉब्लम्स को खत्म करेगा। ठीक है, अब वो क्या है, एंटी एजिंग स्किन है अगर आपकी तो वो यंगर, मोर देन यंगर हो जाएगी। ठीक है जी, और एंटी एजिंग स्किन, फाइन लाइन्स आपके फेस के ऊपर हैं, आईज के पास है, कहीं भी है, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, दोबारा से आप जो है यंग दिखना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब इंसान अपनी केयर करता है या कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज करता है जो कि उसकी स्किन को खूबसूरत बना रहा हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो एज है वो आपकी उम्र से कम लगने लगती है। ठीक है, जो मौजूदा आपकी एज है ना उससे पीछे चले जाते हैं आप, और यही वजह है कि सुपर वाइट की वाइटामिन सी क्रीम जो कि आपको दे रही है ये सारी के सारे फायदे। अच्छा, इसके साथ साथ आपकी स्किन को ब्राइटन अप करती है, जिन लोगों की स्किन के ऊपर ग्लो नहीं आता, स्किन ब्राइट नहीं है, ये सारे मसले मसाइल हैं, तो ये सारे मसले मसाइल खत्म होंगे, और वो कैसे होंगे, एंटी एजिंग स्किन को भी खत्म करेगी, ब्राइटन अप करेगी स्किन को। इसके अलावा अगर आपके ओपन पोर्स हैं तो स्किन के ओपन पोर्स को मिनिमाइज करेगी, और डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करेगी, आपकी फेयरनेस को इंक्रीज करेगी। ऑल स्किन टाइप्स के लिए बिल्कुल सेव और हेल्दी है वाइटामिन सी की क्रीम, सुपर वाइट की वाइटामिन सी क्रीम। तो सुपर वाइट की वाइटामिन सी क्रीम के रिजल्ट को डबल करने के लिए आप लोग इसका फेस वॉश भी साथ में यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि वाइटामिन सी फेस वॉश, सुपर वाइट का वाइटामिन सी फेस वॉश भी यूज करेंगे, तो ये कमाल की प्रोडक्ट आ गई है आपके पास, तो इसको यूज करें, और यूज जब भी करें तो रात को सोने से पहले करें। वैसे आप इस क्रीम को दिन में भी लगा सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों को पिगमेंटेशन का अपनी स्किन पर बहुत ज्यादा इश्यू है, बहुत ज्यादा छाइयां हैं फेस के ऊपर, और कॉम्प्लेक्शन आपका कहीं से बहुत ज्यादा फेयर है, बहुत ज्यादा डाउन है कहीं से, तो इसलिए आपकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा इवन टोन में नजर नहीं आती है, तो यही वजह है कि छाइयां हो जाती हैं, बहुत सारी चीजों में हम अपना ख्याल नहीं रख रहे होते हैं, या कुछ ऐसा खा लेते हैं जिसकी वजह से हमारे स्किन पे एलर्जी हो जाती है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए, और खास तौर पे पिगमेंटेशन को खत्म करने के लिए, वाइटामिन सी की क्रीम आप लोग यूज करेंगे, सुपर वाइट की वाइटामिन सी क्रीम, जिसकी पैकेजिंग बहुत कमाल की है, जिसका रिजल्ट बहुत कमाल का है। पहले ही 3 दिन में आपको वाजह फर्क नजर आएंगे, और वाजह फर्क आपको दिखेगा। ठीक है जी, और ये फर्क ऐसा होगा कि आपकी जो छाइयां हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जाएंगी, और जब आपकी छाइयां खत्म होती जाएंगी तो आप देखेंगे कि आप खूबसूरती की तरफ पहला कदम बढ़ा चुके हैं, पहले ही 3 दिन में वाजह फर्क देखने के बाद। ठीक है, तो ये सब कुछ होगा, और इसके अलावा जी सुपर वाइट के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ कॉमेंट्स और मैसेज रिमूव करेंगे, साथ में आप लोगों की कॉल्स भी

0: मुझे जहान खान मरी वन से ग्रैंड में कॉमेंट कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम सुनीत आरजे कैसी हो जहान खान मरी, थैंक यू सो मच और शो इज बेस्ट फॉर यू। ये लिखा है मलिक निजर मोहम्मद काकिस हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच आपका भी, वेलकम टू द शो। और साथ साथ मैसेजेस भी मुझे रिसीव होते जा रहे हैं, साथ साथ आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 0300 1134 88 के ऊपर आप लोगों की लाइव कॉल्स को एंटरटेन कर रहे हैं हम। सो सेम कॉलर्स आर नॉट अलाउड, ठीक है, कोशिश करें कि दो दिन छोड़ के कॉल करें ताकि मैक्सिमम नए लोगों की कॉल जो है हम रिसीव कर पाएं। एंड इसके अलावा जो सेकेंड रूल है कॉल करने का वो ये है कि अगर आप दो दिन छोड़ के कॉल कर रहे हैं तो आप लोगों ने करना यह है कि जो बहुत सारे लोगों को आप एज अ फ्रेंड इंक्लूड करते हैं कि दोस्तों को शामिल करना है, तो इस चीज को भी थोड़ा सा साइड पे करें, ये ट्रेंड बहुत पुराना हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा सलाम की टोकरी घर छोड़ के आनी है हमेशा की तरह, और क्या, और ये कि एक अच्छा सा गाना सुनाना है, बॉलीवुड कॉन्टेंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। बॉलीवुड कॉन्टेंट के अलावा और कोई जो भी कॉन्टेंट आप गाएंगे वो प्ले कर दिया जाएगा, और इसके अलावा आपका जो गाना है जो आप गाएंगे वो सैड नहीं होना चाहिए, अगर सैड हुआ तो मैं आपसे सुन लूंगी लेकिन प्ले नहीं करूंगी, ये है इस सेगमेंट का रूल, ठीक है। तो ये कुछ रूल है जिनको आप लोगों ने फॉलो करना है, और फॉलो करने के साथ साथ कॉल कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलर ऑन द कॉल, हेलो, ओके, कॉल ड्रॉप हो गई हमारी पहली। सो 0300 1134 88 के ऊपर एक और कॉलर, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, और आवाज क्यों नहीं आ रही है। ओके, आवाज को हम लेकर आएंगे और एक बार फिर से चेक करेंगे जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, हेलो अस्सलाम वालेकुम, हेलो, ओके जी, आवाज नहीं आ रही है, ये क्या इश्यू है। हेलो,
1: हेलो,
0: हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं आपसे। हेलो
1: जी,
0: कौन बात कर रही है, कहाँ से। सॉरी,
1: हेलो,
0: हेलो, नाम बताइए, कौन बात कर रही है। थोड़ा सा लाउड में बात करें। ओके, कहाँ से बात कर रही है।
1: मोरो से।
0: मोरो से बात कर रही है जैबुल निसा।
1: हाँ।
0: प्रोग्राम सुनती हैं? सुनती हैं प्रोग्राम जैबुल निसा। कॉल ड्रॉप हो गई जैबुल निसा, कंफ्यूज हो गई, बात क्या करनी थी। अच्छा, 0300 1134 88 एक और कॉलर, हेलो,
2: हेलो, अस्सलाम
0: वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से।
2: गुलाम रसूल मरी, मीरपुर
0: गुलाम रसूल मरी भाई, प्रोग्राम सुन रहे हैं, कॉल ड्रॉप हो गई है इनकी भी। इसी बात पे हम चलेंगे गाने की तरफ, और गाने के साथ फिर हम आगे जाते हैं, और गाना मैं प्ले करूंगी बहुत ब्यूटीफुल, उसको सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, और गाने के साथ हम चलेंगे आगे। और ये वाला गाना मैंने काफी दिन से प्ले नहीं किया, और आज जब मेरे सामने आया तो उसको हम प्ले करते हैं, सुनते हैं और आगे चलते हैं। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट प्रोडक्ट्स बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स।

0: ओके जी, ब्यूटीफुल सॉन्ग. सॉन्ग के साथ साथ हम ले रहे हैं आप लोगों की बहुत सारी लाइव कॉल्स एंड नेक्स्ट कॉलर हम उस लाइन पे मौजूद होंगे. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? जैबुल निसा. आपकी कॉल ड्रॉप हो गई थी. जैबुल निसा, मुझे ये बताइए, प्रोग्राम सुनती हैं? थोड़ा सा लाउडली बात करें, प्रोग्राम सुनती हैं?
1: हाँ
0: ओके, प्रोग्राम सुनती हैं. कौन सा प्रोग्राम है?
1: जिंदगी
0: और सुपर वाइच. वाओ, अच्छा मुझे बताओ कि सुपर वाइच के प्रोडक्ट यूज किए हैं कभी?
1: मैं अभी छोटी हूँ.
0: अभी हेलो,
1: अभी छोटी हूँ. अभी
0: कितनी छोटी हैं?
1: 13 साल.
0: 13 साल की हैं. 13 साल की हैं तो कोई बात नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं सुपर वाइट के, वो आप लगा सकती हैं, यूज कर सकती हैं. ज़ेबुनिसा
1: जी जी
0: ओके, मुझे बताओ और कुछ कहना है?
1: नहीं नहीं.
0: चलो अपना बहुत सारा ख्याल रखो. थैंक यू अल्लाह हाफिज़ जी. 03000114888 इसके ऊपर कॉल कर रहे हैं आप लोग, और कॉल करने के साथ साथ आप लोग सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं. अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो वेरी बैड, करना चाहिए आपको. और इसके अलावा सुपर वाइट के बहुत सारे प्रोडक्ट जिसमें कि स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम भी आती है. सुपर वाइट की स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम जो कि कोरियन फॉर्मूला है कोरियन स्किन को बनाने के लिए, तो वो तमाम तो लोग, वो तमाम तो लड़कियां, वो तमाम तो खवातीन जिनका ड्रीम है कि हमारी ग्लास स्किन हो, कोरियन स्किन हो, सो वो यूज कर सकते हैं इसको. सुपर वाइट की स्ट्रॉबेरी ब्यूटी क्रीम को

0: It's 12 p.m. This project is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream.
3: A project by Aksa Cosmetics Pakistan.
5: वफ़ाक़ी वज़ीर अलीम ख़ान चयो आहे त 30 सालनि खां देरि जो शिकार मोटरवे जे तामीर शुरू थियण पई वञे. M6 जहिड़े तारीख़ी मनसूबे खे अमली शिकिल ॾियण जो मौक़ो मिली रहियो आहे. M6 मोटरवे सिंध समेत सॼी पाकिस्तान में वापारी सरगर्मियुनि खे हथी ॾियण हूंदो. M6 मोटरवे मनसूबो सिंध ऐं पाकिस्तान जे तरक़ी लाइ अहम साबित थींदो. केपीए में सिक्योरिटी फोर्सेज जी कार्रवाई, 8 दहशतगर्द मारिजी विया. DI खान में दहशतगर्दनि जी मौजूदगीअ जी ॻुझे इतलाउ ते ऑपरेशन कयो वियो. सिक्योरिटी फोर्सेज मूजिबि ऑपरेशन में मारिजी वियल फितरल खारिजनि जा 3 कमांडर बि शामिल आहिनि. मारिजी वियल दहशतगर्दनि वटां वॾे अंग में हथियार ऐं परॾेही करंसी हथ आई. सिंध यूनिवर्सिटी जामछोरो में तालीमी साल 2027 जे बैचलर डिग्री प्रोग्राम जी प्री एंट्री टेस्ट वरिती पई वञे. पहिरें मरहले जी टेस्ट में सिंध जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि मां 8,000 खां वधीक उमेदवार हिसो वठी रहिया आहिनि. बैचलर प्रोग्रामनि लाइ 19,416, मास्टर ऐं BS 3 सालनि लाइ 3,095 उमेदवार रजिस्ट्रेशन कराई. सूबे दौरो भरिसां वाह खे गुज़िरियल राति खां लॻल घारो बंदि न थी सघियो. वाह खे घारे सबबि कमंद वण ऐं केलनि जे बाग़नि समेत ॿियो फसल पाणी हेठि अची वियो. इलाइक़े वासियुनि पंहिंजे मदद पाण तहत राति खां वठी घारो बंदि करण जी कोशिश में रुधल. सकरंड में जवाबदार नींगर खे नशो ॾियण बैदि मुबैना बदफ़ैली जो निशानो बणाए फिटो करे विया. खानज़ादा पाड़े जे रहवासी नींगर खे बदफ़ैलीअ जो निशानो बणाए 0.0 वटि फिटो कयो वियो. वारसनि चयो आहे त नींगर राति खां गुम हो. माण्हू नींगर खे खणी आया ऐं ॿुधायो त हू 0.0 वटां मिलियो आहे. नींगर ते तशदुद बि थियल आहे. जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे इंसाफ़ फराहम कयो वञे. मटियारी भरिसां तेज़ रफ़्तार कार ड्राइवर जो रोड पार कंदड़नि खे टकर, 4 ॼणा ज़ख़्मी. क़ौमी शाहराह ते तेज़ रफ़्तार कार ड्राइवर जे कंट्रोल मां निकिरी रोड क्रॉस कंदड़नि खे टकर हयो. 4 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया. हादसे में दिलशायर मंगरियो, हमज़ा बासित ऐं शिराज़ शदीद ज़ख़्मी थी पिया, जिन खे इस्पताल मुंतकिल कयो वियो.

खेरपुर में इलेक्ट्रिक के दुकान में शॉर्ट सर्किट सबब बाय लखे रुपये जो सामान सड़ी रख दुकानदार मुझे बाय लगने करे संदस 15 लख रुपये जो नुकसान थियो आहे।

ऐं यमनी हुसैन जी सऊदी अरब जे वॾे आयल कंपनी आरामको जे रिफाइनरीअ ते हमले जी दावा। हुसैन जो चवणु आहे त सऊदी अरब पारां यमन जे राजधानी सना ऐं ॿियनि हमलनि जे जवाब में आरामको ते हमिलो कयो। ॿिए तरफ़ सऊदी इख़्तियारनि यमनी हुसैन जी दावा बेबुनियाद करार ॾेई छॾी।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। आप प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
5: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
4: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
5: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
4: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
5: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
4: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
6: सुपर वाइट।

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतों ने बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
2: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतन ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खुशख़बरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331-2525-786।
3: 3625-5786।
4: GAFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार, आपको मेरा साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है. और आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट, बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स और सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स जिनके नामों से आप ये प्रोग्राम सुन रहे होते हैं. और ये दो घंटे की जर्नी जो कि डेली बेसिस पे 11 से लेके 1 बजे तक जिसमें आप मेरे साथ और मैं आपके साथ मौजूद होती हूँ जी. साथ साथ आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर 03000113488888 पे मैसेजेस कर सकते हैं आप लोग. इसके अलावा कमेंट कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के ऊपर डायरेक्ट GFM88 एंड GLRKANA FM88.8. ठीक है, इन पेजेस के ऊपर आप जाएं, जाने के बाद देखें आपको मिलती है ऑडियो स्ट्रीमिंग. तो वहाँ पे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं और बहुत सारे कमेंट कर भी रहे हैं. तो मैसेजेस की तरफ आते हैं जी. यदि बहन रुखसार बाजी सुपर वाइट ब्यूटी क्रीम प्रोग्राम आप बहुत अच्छा कर रही हैं. किसी इंसान से गलत इल्जाम, क्या लिखा है आपने इल्जाम के बारे में, मैं जरा पढ़ लूँ ये ऑन एयर करने से पहले.

अच्छा ये कह रहे हैं कि किसी इंसान ने गलत इल्जाम देकर कल शाम से बुखार ने अपना नाम भी नहीं लिखा. ओके अल्लाह करे आपका बुखार जल्दी से उतर जाए.

कॉमेंट्स के साथ साथ हम आगे चलते हैं एंड हम कॉमेंट्स की तरफ भी आते हैं, कॉल्स की तरफ भी आते हैं और सुपर वाइट की तरफ भी आते हैं. तो सुपर वाइट और सुपर वाइट के बहुत सारे प्रोडक्ट जो कि आप लोग यूज कर रहे हैं और अगर नहीं कर रहे तो वेरी बैड, जल्दी से कर लें. और सुपर वाइट के और भी बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट आते हैं जिसमें इनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं. मतलब क्या ऐसा नहीं है जो सुपर वाइट वाले ने ना बनाया. और पेट्रोलियम जली और हल्दी की जो है ब्लीच क्रीम इनकी आती है. इसके अलावा जी इनकी पेट्रोलियम जली बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्लेवर्स में आती है. और अब सर्दियों की जो एक बहुत अहम जरूरत है ना हर इंसान की, वो है जी पेट्रोलियम जली, जो कि आप लोग बाय करने जाएंगे. तो इस सीजन आपने करना ये है कि पेट्रोलियम जली अगर लेनी है तो वो आपने लेनी है जी सुपर वाइट वालों की. कोकाओ बटर के फ्लेवर में आती है जी सुपर वाइट की पेट्रोलियम जली. इसके अलावा सुपर वाइट की पेट्रोलियम जली लेमन में आती है, लेमन की फ्रेग्रेंस और लेमन की खूबियों के साथ. इसके अलावा जी पिंक में भी आती है जी सुपर वाइट पेट्रोलियम जली. और ये जो पेट्रोलियम जली डिफरेंट अलग अलग फ्लेवर्स में आपको मिल रही है, बहुत कमाल की पेट्रोलियम जली है. इसको यूज कर सकते हैं आप इस सीजन में, ठीक है जी. तो ये बड़ी कमाल की स्किन आपकी बना देगी. अगर बहुत सारे लोगों को बहुत सारी ड्राइनेस का जो है सामना करना पड़ता है, जिन लोगों की स्किन खासतौर पर बहुत ज्यादा ड्राई रहती है, तो सर्दियां आने के बाद उनकी स्किन मजीद और ज्यादा ड्राई होने लग जाती है. तो आप लोग यूज करेंगे. अच्छा, जिन लोगों की स्किन ऑयली है उनके लिए खास तौर पर सुपर वाइट वालों ने सुपर वाइट की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम बना दी है. पहले ही 3 दिन में विजिबल रिजल्ट्स देखेंगे इसके इस्तेमाल से, ठीक है. इसका फायदा यह है कि डार्क कॉम्प्लेक्शन को फेयर करती है. डार्क कॉम्प्लेक्शन को फेयर करने के साथ साथ करती यह है कि आपकी स्किन से पिंपल्स को खत्म करती है मुकम्मल तौर पर. और पिंपल्स को खत्म करने के बाद करती यह है कि आपकी स्किन को फ्लॉलेस और खूबसूरत बनाती है. तो जब आपकी स्किन फ्लॉलेस और खूबसूरत लगती है तो आपकी स्किन बेदाग हो जाती है और आपकी स्किन इस कदर खूबसूरत लगती है कि स्किन खूबसूरत होने के बाद, चेहरा खूबसूरत होने के बाद एक अलग सी अट्रैक्शन आपकी जो है वो लोगों को अपनी तरफ खींचती है. और यही वजह होती है कि सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स आपको खूबसूरत बनाते हैं. अच्छा, सुपर वाइट की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम वो तमाम तरह लोग यूज कर सकते हैं जिनकी स्किन ऑयली है, ठीक है. स्किन ऑयली होने के बाद आपको ऐसी प्रोडक्ट यूज करनी चाहिए जो कि आपकी स्किन टाइप से जो है रिलेटेड हो, आपकी स्किन टाइप को जो है ना मतलब कि आपकी स्किन टाइप के मुताबिक आपकी स्किन को ट्रीट करे, ठीक है. तो वो जो ब्यूटी क्रीम है वो है जी ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम सुपर वाइट वालों की, जो कि आप यूज कर सकते हैं. और सुपर वाइट वालों की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम

गाने की आवाज मुझे ही डबल आ रही है या ये वाकई डबल है? इस गाने को हम क्या करेंगे, आगे चल के चेंज करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रही थी ऑयल फ्री फेस वॉश के बारे में। तो ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम जो कि सुपर वाइट वालों की आती है, इसके साथ आपको ऑयल फ्री फेस वॉश भी यूज करना है। अगर तो आप क्रीम के रिजल्ट को डबल से ट्रिपल करना चाहते हैं, सजाज आप यूज करेंगे सुपर वाइट का ऑयल फ्री फेस वॉश भी साथ में, ठीक है? सुपर वाइट का ऑयल फ्री फेस वॉश यूज करेंगे। इसको यूज करने से आपका जो मजीद और ऑयल आपकी स्किन पे आता है, और खास तौर पे मतलब कि सर्दियां हो गर्मियां हो, आपकी स्किन पे वो ऑयल रहता ही रहता है। उस ऑयल की वजह से आपकी एक्ने का इश्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक्ने के साथ साथ और भी बहुत सारे मसले मसाइल जो कि ऑयली स्किन वालों को फेस करने पड़ रहे होते हैं। लेकिन ऑयली स्किन वालों का जो एक मतलब फायदा यह है ऑयली स्किन होने का कि उनकी स्किन पे जो है ना झुर्रियां देर से पड़ती हैं, क्योंकि उनकी स्किन ऑयली होती है। तो स्किन जब उनकी ऑयली होती है तो उनकी जो स्किन है ना वो देर से उस पर जो है फाइन लाइन्स और ये चीजें आती हैं। खैर ये तो एक अलग सा फायदा है, लेकिन आप लोग करेंगे ये कि ऑयल फ्री फेस वॉश को भी यूज करेंगे, और ऑयली स्किन टाइप वाले लोग खासतौर पर खवातीन जिनकी फेस के ऊपर मेकअप नहीं टिकता ऑयली होने की वजह से, तो यही वजह है कि वो मेकओवर को भी सही से कैरी नहीं कर पाते। खैर सर्दियों में तो हो जाता है, गर्मियों में नहीं हो पाता। तो इन तमाम तर मसले मसाइल से छुटकारा हासिल करने के लिए आप लोग यूज करेंगे सुपर वाइट की ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम प्लस सुपर वाइट का ऑयल फ्री फेस वॉश, जो कि स्किन को कमाल का खूबसूरत बना देगा।

0: ओके एंड उजैफ हमें मैसेज कर रहे हैं जो सॉरी कमेंट कर रहे हैं और कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सिस, मेरी पसंद का सॉन्ग प्ले करेंगी क्या? कौन सा पसंद है आपको, कौन सा सॉन्ग पसंद है आपको? अच्छा इसके अलावा 03000113488 के ऊपर एक कॉलर लेते हैं जी. हेलो. ओके कॉलर ड्रॉप हो रहे हैं आज हमारे, पता नहीं क्यों, लेकिन नेक्स्ट. अच्छा ये भी ड्रॉप हो गया, खैर. ओके जी हेलो हेलो. ओके जी आवाज नहीं आ रही है और कॉल हमारी क्यों बार बार ड्रॉप हो रही है. ये भी ड्रॉप हो गई, खैर हम ट्राई करते रहेंगे, हम हार नहीं मानेंगे और कॉल्स को हम लेते रहेंगे. 03000113488 के ऊपर आप लोगों की लाइव कॉल्स और साथ में हियर कम्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय आतिफ असलम सुनेंगे, एंजॉय करेंगे.
1: तेरा मुखड़ा जीवे नहीं चन,
0: और आप सुन रहे हैं सुपर वाइट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स.

0: स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचण, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम।
2: अमर सिंध जे सींध में हिक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:30 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347।

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वॻे खां रात 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां रात 10 वॻे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
5: सुनते रहो GFM 90.4।

पाकिस्तान से हमें सुन रहे हैं जी, वेलकम टू द शो। बलूचिस्तान वाले बहुत ज्यादा शो में इंटरेस्ट ले रहे हैं, वेलकम टू द शो। और इसके अलावा जी और क्या करेंगे हम, और ये करेंगे हम कि मैं सोच रही हूँ हमें मूव करना चाहिए दूसरे गाने की तरफ। एंड अनदर सॉन्ग इज बाय मुस्तफा जाहिद, इसको सुनते हैं और आगे चलते हैं।

0: ओके जी, कॉलर मेरे लाइन पे मौजूद होंगे, चेक करेंगे कॉलर कहाँ से। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: अजी मामले ना बम्बर है
0: पत्रकार। कैसे भाई, ठीक ठाक? पहली दफा कॉल कर रहे हैं।
1: अल्हम्दुलिल्लाह,
0: कहाँ
1: खुश है
0: जी?
1: अल्हम्दुलिल्लाह,
0: पहले वो चक्कर कॉल किया। ओके, केड़ो केड़ो प्रोग्राम बुटो था?
1: प्रोग्राम जिंदगी गुलजार,
0: स्पॉन्सर्ड बाय
1: जी जी जी जी कॉस्मेटिक एंड सुपर वाइट।
0: सुपर वाइट कॉस्मेटिक, सुपर वाइट प्रोडक्ट, वेरी गुड। तो सुपर वाइट के प्रोडक्ट कब इस्तेमाल कर रहे हैं?
1: जी जी बिल्कुल,
0: कब इस्तेमाल कर रहे हैं? ओके, जरूर ले ले, और कुछ कहेंगे? ओके, ओके, आपको समझाते हैं जी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। 03000113488 के ऊपर आप लोगों की बहुत सारी लाइव कॉल्स, और मुझे कल किसी ने रिक्वेस्ट की थी और मैंने एग्री भी किया था कि मैं प्ले करूंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे दिमाग से निकल गया और मैं भूल गई। सो वो जो रिक्वेस्ट है वो भी हम प्ले करेंगे, ठीक है जी। और 03000113488

0: ट्रिपल एट के ऊपर एक और कॉलर इंटरटेन करने जा रहे हैं। हेलो
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कौन से?
1: आपसे पहले डॉक्टर लाजवाना से आपका प्यारा सुपर वाइट कॉस्मेटिक अच्छा।
0: सुपर वाइट कॉस्मेटिक, वेरी गुड। तो कब तक इस्तेमाल कर रहे हैं
1: इस प्रोडक्ट? इस्तेमाल हमने नहीं किया, बस प्रोग्राम आपका जबरदस्त सुन रहा हूँ हफ्ते के 7 दिन।
0: हफ्ते के 5 दिन, हफ्ते के 7 दिन।
1: ये आपका शो जबरदस्त है।
0: चलें, थैंक यू सो मच। और कुछ कहेंगे?
1: अल्लाह आपको सलामत रखे, हमारे यहाँ सदाई प्रोग्राम कंदा रहो। अल्लाह सदाई सलामत रखे। कुछ माण्हू चवंदा त इहो प्रोग्राम ज़िंदगी गुलदार बंदि कयो वञे, पर न, ही प्रोग्राम तमामु बहितरीन आहे।
0: कौन कौन कह रहा है? मैंने तो नहीं सुना।
1: आपने नहीं सुना ना?
0: नहीं, मैंने तो नहीं सुना।
1: इस्ताक़बाल प्रोग्राम में भी चवंदा बस आप सजे।
0: हाँ चले,
1: बाकी आवाज प्रोग्राम तमाम बेहतरीन।
0: ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखे। ओके जी, वेरी वेरी वेरी बैड, कितनी बुरी बात है। आपको क्या तकलीफ है? बहुत बुरी बात है। गाना सुनते हैं थोड़ा सा, फिर एक और कॉल लेते हैं। सुपर वाइट के प्रोडक्ट्स जो कि अक्सर कॉस्मेटिक्स वाले आप लोगों के लिए बना रहे हैं, बहुत ही प्यार से, बहुत ही मेहनत से, आला मयार और आला क्वालिटी के साथ।

अच्छा इसके अलावा जी एन उजैर कहते हैं कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करें. अच्छा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप वही हैं जिसका शक हमेशा सही और फैसला हमेशा गलत होता है. वही वाले तो नहीं है आप. आपका कमेंट पढ़ के मुझे फील हुआ. अली हसन ने हमें कमेंट किया है जी दवाज दादू से. ये मैं पहली दफा रीड कर रही हूँ. वेरी इंटरेस्टिंग.

Becky G, just like Super White product और Super White के product जिसमें Super White की Rise Beauty Cream आती है, Super White की Anti Acne Oil Free Cream आती है जी, और Vitamin C Cream, Strawberry Beauty Cream, Super White की Turmeric Beauty Cream और इनके face washes क्या कमाल के products हैं जी, और अक्सर cosmetics वाले ये तमाम products आपकी खूबसूरती को increase करने के लिए बनाते हैं और आप खूबसूरत बनते भी हैं। इसी के साथ फाइनली मेरे जाने का वक्त हो जाता है जी, इंशाल्लाह मेरी आपसे चिट चैट होगी अब कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो विद द सेम आरजे, सुना मत भूलिएगा। जिंदगी गुलजार है स्पॉन्सर्ड बाय सुपर वाइट अक्सा कॉस्मेटिक्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। सो दिस इज मी आरजे रुखसार साइंस आउट, टेक केयर, गुड बाय, अमानी खुदा, अल्लाह हाफिज।

केपी हुकूमत अफगान कैंपों के खात्मे पनाहगीर की डे वापसी से राजी थी हुई। वफाकी घरू वजीर मोहसिन नकवी है तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कौमी एक्शन प्लान से अमल दरामद करण की खातरी कराई हुई। केपी हुकूमत खातरी कराई तो सवाबी में दहशतगर्दन के महफूज थाक न मिलंदा। 72 कलाक में लिखत में मुआहदों अमल दरामद मनसूबो जमा कराने से इतफाक थो। केपी हुकूमत अफगान पनाहगीर की डे वापसी ए कैंप के खात्मे की हिमायत सभी अफगान अबूरी हुकूमत से बराबते में न रहने इतफाक किया।

ईरानी खेबर एजेंसी मूजिब कुवैत जे बिने अरब इमारात जे टिन जहाजन खे निशानो बणायो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जी आपने अरब से खुलियल हुजण जी दावा बावजूद कार्रवाई जारी रही। ईरान शर्तू पूरियूं न थियण ताईं आबने अरम्स न खोलींदो। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकिर कालीबाब चयो आहे त ईरान जो मौक़ मुकमल तौर वाज़े आहे त अमरीका जेसी ताईं इस्लामाबाद मुफ़ाहमत यादाशनामे में तय थियल सत ईरानी शर्तू पूरियूं न कंदो। आबने अरम्स बंदि रहंदो। अमरीका खे समझणो पवंदो त मामले खे ब्रेक ॾियण जो वक़्तु ख़तम थी चुको आहे। हिक तरफ़े मुतालबा तस्लीम करण जो दौर हाणे न आहे रहियो।

0: 2027 जे बैचलर डिग्री प्रोग्राम जी प्री एंट्री टेस्ट वरती वही। पेरे मरहले में टेस्ट में सिंध जे मुख्तलिफ़ ज़िलनि मां 8,000 खां वधीक उमेदवारनि हिसो वरितो। बैचलर प्रोग्रामनि लाइ 19,416, मास्टर ऐं बीएस टिनि सालनि लाइ 3,095 उमेदवार रजिस्ट्रेशन कराई। लाड़काणे में चेकिंग दौरान हथियारबंदनि जी फायरिंग में 2 पुलिस अहलकार ज़ख़्मी। लाहौरी पाड़े में चेकिंग दौरान ॾोहारनि पुलिस मथां फायरिंग करे ॾिनी। गोलियूं लॻण सबबि अहलकार अली ज़ेब अबड़ो ऐं आशिक पुल ज़ख़्मी थी पिया। पुलिस जो चवण आहे त अहलकार चेकिंग करे रहिया हुआ त मोटरसाइकिल सवारनि खे बीहण जो इशारो ॾिनो। न बीहण ते अहलकारनि सदन पीछो कयो त ॾोहारनि मथां फायरिंग कई।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: Brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। आप प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
5: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
4: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
5: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
4: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
5: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
4: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
6: सुपर वाइट।
7: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0362-3636-879 ऐं 0312-3401-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
8: अमर सिंध जे सींध में हिक चमकंदड़ सितारो,
9: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
8: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
9: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
8: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
10: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
9: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां रात 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां रात 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
4: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो,
3: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331-2525-786।
3: जी हा, 3135-2525-786।
4: GAFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

ओके जी, क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत सी नात हमने यहाँ पर सुनी और आप सुन रहे हैं वाई टेशन डी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से, और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल क्या पूछा जा रहा है सबसे पहले वो बता देते हैं। जनाब, तो आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक होने वाला है, यानी कि जो सवाल होने वाला है, वो क्या होगा, तो जरा गौर से सुनिएगा। आज मेरा आप लोगों से सवाल है कि आप मुझे बताएं कि वो कौन सा जानवर है जिसका अगर जिस्म का कोई पार्ट कट भी जाता है तो वो दोबारा से जो है ना वो उग जाता है, दोबारा से वो जो हिस्सा है ना उसका मुकम्मल हो जाता है। जैसे अगर हम प्लांट को काट देते हैं तो वैसे ही प्लांट की जगह पर वहीं पर एक और शाख उग जाती ना, बिल्कुल वैसे ही वो कौन सा एनिमल है, कौन सा जानवर है जिसका अगर बॉडी का कोई पार्ट कट जाता है तो वो दोबारा से उसे जो है ना वो उगा देता है। आज के प्रोग्राम का ये सवाल है, आपने क्या करना है इसका जवाब देना है। अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 888 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जनाब जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है। वहाँ पर आइए, आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है, जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए, और मुझे बताइए कि आप भी हमारे साथ मौजूद है, आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। ओके जी, साथ साथ अगर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं तो वो भी जरूर शेयर किया करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होती है। सुनने वाले लोगों को भी ना ये पता चले कि भाई आप लोग जो हैं वो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करके कितने ज्यादा खूबसूरत हो चुके हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश के बारे में आप लोगों को बिल्कुल बताते रहेंगे। आप पोस्ट को लाइक और शेयर करना जो है ना वो मत छोड़िए, लाइक और शेयर करते जाइए। और साथ ही साथ अगर आप भी चाहते हैं कि भाई हमारे करीबी जनरल स्टोर पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल होना चाहिए, तो उसके लिए आपको नंबर बताए जाते ही प्रोग्राम के अंदर, जो कि डायल करके 0 आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स के ऊपर डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश को अवेलेबल करा सकते हैं। तो जल्दी से आपने डायल करना है 03-12-50-25-907 IMEI नंबर आहे 0333-8-4309 साइन जेके तवां डायल करे दुनिया जे केड़े भी कोने में मौजूद आ त तवां डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अवेलेबल कराए सको था। तो बाबा तवां के सिटी कासा के बुधो था, तवां जो के गोठ का ताल्लुक आ है, तो हर जगह ते तवां डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अवेलेबल करायो, तवां जे लिए आसानी थी वेंदी, बस तवां वेंदा ई तवां परचेज करेंदा। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश जी क्या क्या क्वालिटीज है वो आप लोगों को बिल्कुल बताती रहूंगी। आप टॉपिक को फॉलो कीजिए, मुझे बताइए वो कौन सा जानवर है जिसके जिस्म का कोई पार्ट अगर कट भी जाए तो वो दोबारा उसे उगा लेता है। इनके अलावा आपकी जी फीडबैक्स मुझे काफी सारे मौसूल हो चुके हैं। आप बस पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए, और यहाँ पर सबसे पहले चाचा खाले जुनेजो का कमेंट कहते हैं कि आई हो खुश आयो बेटा सिद्रा, माँ सफा मजे में ताम बुदा की आयो, और कहते हैं गुड आफ्टरनून हो चुका है, गुड आफ्टरनून। और निजाम भट्टी कादरी हमारे साथ है मटियारी से, आपने मुझे ज्वाइन किया, कहते हैं मेरे शॉप से आपका शो सुन रहे हैं बाजी, आज हमारी पसंद का सॉन्ग सुना दो मुमताज लाशारी का, माँ कोशिश क्या थी भात हमारे सबने जो फरमाइश हलाइना से। अल्लाह डना भाई हमें कश्मीर से सुन रहे हैं, अल्लाह डना भाई को भी वेलकम हो गया। और साथ साथ हमारे साथ है जमान भाई, लिखते हैं गुड आफ्टरनून एंड वेलकम माय स्वीट बुआ जी, वेलकम टू

0: It's 1:30 PM.
1: सिंध के माथे का झूमर
2: GFM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।
4: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: अरे न, खुश ऐं बीरोनो की स्किन, हाणे इन जे लाइ छा डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो आउट। पर इहो कीअं? तोखे खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, जंहिं में आहिनि चांवरनि जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन, जो जिल्द खे रिस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे, ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ 3 ॾींहनि में। जिल्द खे बणाए नरम, मुलायम ऐं ब्राइट। उन सां गॾोगॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम, जंहिंजी हर कतरे सां चेहरे खे

0: सभी की खूबसूरती हर हर में रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
1: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी औरतुन बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
3: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
4: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे यादि रखंदा दायमी बुखार नज़लो ज़ुकाम बदन में सूर बेचे कमजोरी मलेरिया मुदे जो बुखार टीबी बदहज़मी मल्लो ऐं बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे
5: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244
1: मातली ऐं आस पास जी आवाम लाइ खुशखबरी मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राब्ते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 0313-086-3163
2: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 0300-2962-435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
7: सुनते रहो GFM 90.4

विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रोबीट फार्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है जनाब यहाँ पर सखर मोरो मीर प्रकाश मटियारी सकरन मेहरापुर मातली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो इस चीज का अंदाजा तो आप लोगों को हो ही चुका होगा कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों की स्किन के लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि जब आप मार्केट जाते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट परचेज करते हैं जब उनका इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं तो कई बार ऐसा भी सीन हो जाता है कि हम जो इतना अपनी स्किन के साथ जुल्म कर रहे होते हैं वो ऐसे कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारी स्किन टोन जो है वो किस टोन की है हमारी स्किन के ऊपर कौन से प्रोडक्ट का यूज करना चाहिए। और खास तौर पर अगर आप लोगों को जब समझनी होती कि भाई जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो आप क्यों यूज कर रहे हैं जब इस तरह का कोई प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे होते ना जो आपकी स्किन के हिसाब से ही नहीं होता तो आपकी स्किन जो है वो खराब हो जाती है। फिर आप बाद में ये कहते हैं कि भाई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते ऐसा नहीं होता। अगर आपको सही तरीका बताया जाए सही प्रोडक्ट बताया जाए तो यकीनन आपको वो रिजल्ट्स मिल सकते हैं जो कि आप हासिल करना चाहते हैं। और यहाँ पर हमारे पास आप लोगों के लिए यस वन एंड ओनली डी स्किन ब्यूटी क्रीम मौजूद है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में तो आप जानती हैं लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको बताना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करें तो आपको पता होना चाहिए कि आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। जनाब सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि आप लोगों की स्किन के मुताबिक तैयार की गई है जनाब और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि एक मेडिकेटेड फार्मूला है ये भी कमाल धमाल चीज है जनाब। डी स्किन ब्यूटी क्रीम वो क्रीम है जिसे स्किन से रिलेटेड जितने डॉक्टर्स होते ना उन्होंने मिलकर तैयार किया है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की क्वालिटीज अगर आप गिनने बैठे तो भाई क्या बात है। अगर आप जानना चाहें कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम कैसे तैयार हुई है तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है इसके अंदर वाइटामिन ई बीट्स है माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है अल्फाबुटीन है कोजिक एसिड है ग्लूटा थायोन है ये तमाम चीजें ऐड की गई हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर। और ये जो तमाम चीजें हैं ना ये सब मिलकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को प्रीमियम फार्मूला बनाते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ये जो मैं विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स का जिक्र करती हूँ ना ये इसलिए करती हूँ क्योंकि जब आप पूरे पाकिस्तान में देखेंगे यानी इतने सारे मुझे लगता है करोड़ों की तादाद में प्रोडक्ट्स होंगे इतने सारे प्रोडक्ट्स के अंदर ये विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स जो है ना ये दो तीन प्रोडक्ट्स ऐसे पूरे पाकिस्तान में जिनके अंदर एड किए गए हैं। तो इसका मतलब ये कि ये जो विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स है ना ये बहुत ही कमाल की चीजें हैं और ये उन महंगे महंगे फेशियल्स के अंदर चीजें ऐड की जाती हैं जो कि लगाने के बाद यूज करने के बाद आप लोगों को बहुत से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते हैं तो लोग आपसे पूछेंगे कि भाई बताएं तो ये कौन सा महंगा सफर आपने फेशियल कराया है कि आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिला है आपकी स्किन इतनी ग्लो करेगी आपकी स्किन जो है ना वो टाइट हो जाएगी आपके चेहरे पर रिंकल्स खत्म हो जाएंगे फ्रेकल्स खत्म हो जाएंगे ये क्रेकल्स खत्म हो जाएंगे आपकी स्किन ग्लो करेगी और आप खूबसूरत से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। अच्छा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये 2-in-1 फार्मूला है यानी कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते हैं तो आपको फेशियल वाले रिजल्ट्स मिलते हैं। एक और बात भी है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ और सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से आपको परफेक्ट वाले निखार देने वाला प्रोडक्ट है। ऐसा कोई प्रोडक्ट जो कि भाई मेडिकेटेड फार्मूला भी हो और फेशियल वाला जो है ना आपको रिजल्ट्स भी दे और सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से आपको परफेक्ट वाला निखार दे तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है डी स्किन ब्यूटी क्रीम से। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए और ये जो आपको मार्केट में बताई जाती है ना कि भाई जल्दी से प्रोडक्ट ले जाएं जल्दी में आपको गोरा बना देंगे तो इस तरह के प्रोडक्ट से बचा करें क्योंकि उनके अंदर बड़े हार्ड से केमिकल ऐड किए जाते हैं और जब वो केमिकल वाला प्रोडक्ट अपने चेहरे पर अप्लाई करते हैं तो आपकी मासूम और नाजुक सी जो स्किन होती है ना वो जरा मैनेज नहीं कर पाती और आपकी स्किन खराब हो जाती है। तो कुछ इस तरह के लाइट वेट फार्मूले यूज किया करें जो मेडिकेटेड फार्मूले हो आपकी स्किन के लिए सेफ हो आपके लिए सेफ हो और उल्टा आपको खूबसूरती भी मिलती रहे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश आपके लिए मार्केट में अवेलेबल या किसी भी करीबी जनरल स्टोर से जाकर परचेज कर सकते हैं। अगर नहीं भी मिल रहा है फर्ज कर लीजिए तो फिर आपको जो नंबर बता रही हूँ उनके ऊपर आप जरूर किया करें कॉल किया करें या फिर मैसेज किया करें आपको रिस्पांस मिलेगा जनाब और बड़ा फास्ट रिस्पांस मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप कॉल करते रहें आपकी कॉल रिसीव ना हो आपको रिस्पांस मिलेगा और आप उन्हें बताइए कि फलां जगह पर जो है वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं मिल रही डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल करा दें तो फाइनली आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी अवेलेबल हो जाएंगे। और उसके अलावा डी स्किन का फेस वॉश उसकी क्या क्वालिटीज हैं बिल्कुल आप लोगों के साथ शेयर करते हैं लेकिन आप जो है ना हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ की प्यारे प्यारे फीडबैक्स हमारे साथ मौजूद है तो साथ साथ आप लोगों के साथ बातें भी करेंगे। और यहाँ पर हमारे साथ एक बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी मौजूद है प्रोग्राम के अंदर तो उनको भी जरा शामिल प्रोग्राम रखते हैं और जनाब उनको एक प्यारा सा गाना भी डेडिकेट करना है और बताएं वो कौन है हमारे साथ। तो फाइन ट्रेडर्स बेरिया रोड से आबिद भाई हमारे साथ मौजूद है। आबिद भाई जो है
जी जी, उन्होंने नोशेरो और थारोशा पटीदन बहरिया रोड ऑल सिटीज में डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करा दिया है। तो जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं नोशेरो फेरो से, थारोशा से, पटीदन से, बहरिया रोड से, आप सारे लोग अपने करीबी जनरल स्टोर से जाकर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। और ये जनाब आबिद भाई ने आप लोगों के लिए अवेलेबल कराए। आबिद भाई हमारा प्रोग्राम भी सुन रहे हैं और फाइन जनरल स्टोर जो है वो वहां पर उनकी शॉप है, यानी कि वो उनकी शॉप है। तो आबिद भाई को हम वेलकम कहते हैं, प्रोग्राम हमारा सुन रहे हैं और उनके लिए एक प्यारा सा गाना हमारी लिस्ट में लाइनअप है, तो हम गाना एंजॉय करेंगे साथ साथ और आप लोगों के साथ मजीद बातें करेंगे कौन कौन हमारे साथ मौजूद है। लेकिन आइए जरा ये प्यारा सा गाना एंजॉय कर लेते हैं। और हमारे साथ महर इरफान सियाल साहब भी मौजूद है, कहते हैं गुड आफ्टरनून मैम आरजे, वी लिसनिंग योर शो फ्रॉम लियाकतपुर। ओके सर जी, आपको वेलकम एंड खुश आमदीद। तारिक भाई लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे आबिद भाई फाइन ट्रेडर्स बेरिया रोड से। आबिद भाई को वेलकम एंड खुश आमदीद के साथ ये प्यारा गाना डेडिकेट करते हैं, तो आइए मिलकर एंजॉय करते हैं। आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।

क्या बात है जी, क्या बात है। बहुत ही सुपर कूल सा गाना जो कि आप एंजॉय करें हमारे साथ साथ मौजूद है और प्रोग्राम सुन रहे हैं वाई स्टेशन डी स्किन ब्यूटी शो। डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप जनाब मालूमात हासिल करते जा रहे हैं और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज भी करते जा रहे हैं, कर रहे हैं ना। बिल्कुल जी, मुझे बताइए। और सैयद फारूक भाई हमें सुन रहे हैं, कहते हैं बाजी ओके जी ओके। परवा कहती है कि आप ही सॉन्ग रिक्वेस्ट है अख बदली हाजिर यो गानो तवा जला हलाए बैठूं था। और उजेफ हमारे साथ है। उजेफ ओके, हेलो उजेफ, कैसे हैं? ठीक ठाक है। अच्छा दीदार अली बिरोही भाई, वालेकुम अस्सलाम, आरजे सदरा, आप कैसी हैं? दीदार बिरोही, टाइम बहुत ही कम होता है इसलिए प्रोग्राम तो सुनते हैं लेकिन शामिल नहीं होने का टाइम मिलता। अरे भाई एक आधा कॉमेंट कर दिया करें, आपको शामिल प्रोग्राम रखा जाएगा। और सैयद फारूक भाई कहते हैं कि मेरा फर्स्ट टाइम है जो इधर ना सुन रहा हूँ, थैंक यू लाडली आरजे। अरे भाई मेरे प्रोग्राम में तो स्टार्टिंग में नाती चलती है, आपको वेलकम कहा जाता है। आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में क्या बता रहे हैं जरा मुझे बताएं, कब इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर मिल रही है नहीं। और इसी के साथ साथ आबिद अली हमारे साथ है। आबिद भाई हमारे साथ है फाइन जनरल स्टोर से, बेरिया रोड से आपने मुझे ज्वाइन किया है। अवेलेबल डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स। अच्छा फाइन जनरल स्टोर पर जाइएगा, बेरिया रोड वाले जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं आपके लिए फाइन जनरल स्टोर पर आबिद भाई जो है वो आपको देंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड व्हाइट एज के तमाम प्रोडक्ट जो भी आप परचेज करना चाहें। तो जितने भी लोग आकर मुझे ये कहते हैं ना कि बाजी हमारे यहाँ तो नहीं मिल रही, या फिर हम जाते हैं तो दुकानदार हमें कोई और ही प्रोडक्ट दे देता है, तो अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाते हैं, उनके पास डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं होती और आपको वो कोई और प्रोडक्ट जो है वो पकड़ा देता है, कहता है कि भाई ये ले जाए ये अच्छा है, तो आप ये निशानी याद रखा करें कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना, इस क्रीम के ऊपर जो फोटो है वो डॉक्टर आंटी का फोटो है, डॉक्टर माइक जो फोटो है सर, समझी आप। तो जॾहिं तव्हां इहो ॾिसो त बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम वॾनि अखरनि में लिखियलु आहे ऐं डॉक्टर माइक जो फोटो आहे, त बाबा तव्हां समझी वञो केतिरो बि मतिलबु मासूम माण्हू हूंदो न, इहा चीज़ त हुनखे नोटिस थी वेंदी त बाबा डॉक्टर माइक जो फोटो आहे त हीअ डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे तव्हां सही तरीक़े सां सही प्रोडक्ट परचेज़ करे अचो, तॾहिं तव्हांखे उहे रिज़ल्ट मिलंदा जेके तव्हां हासिल करणु चाहियो था। डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिकु मेडिकेटेड फार्मूलो आहे, त का टेंशन बि न आहे त बाबा असां स्किन असांजी सेंसिटिव आहे लॻाए सघूं था अलाए नथा लॻाए सघूं, त हर स्किन जे मथां तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज़ करे सघो था, चाहे तव्हांजी स्किन सेंसिटिव हुजे, ऑयली हुजे, नॉर्मल हुजे, ड्राई हुजे, कॉम्बिनेशन टाइप हुजे, हर स्किन जे यूज़ जे मुताबिक आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम। मर्द हज़रात ख़वातीन तव्हां सभु लॻाए सघो था। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम वञो बाबा परचेज़ करे अचो।

क्या बात है जी, क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत सा गाना, बहुत ही खूबसूरत सा प्रोग्राम आप इंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करते जा रहे हैं। और जेफ लिखते हैं कि आज हम भी आए हैं, बहुत अच्छा किया जी आपने, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। मेहताब अली इंटर में सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम मेहताब भाई, कैसे हैं, ठीक ठाक। अलीशा लिखते हैं कि उसकी आंखें एक तरफ, जादू टोना एक तरफ, हाय अल्लाह। लिखती है कि आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू, मेरी जिंदगी है तू। सद्दिको।

बिल्कुल जी भाइयों ना भाइयों पर असि अवां चाहियो असा के रोज अवां के बुधाई नहीं दासी दबा बा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल अवां जे खूबसूरती लाए छो जरूरी आहे सो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का आप यूज करते रहिए और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आप सब लोग कर सकते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम है और साथ में आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है तो परचेज कीजिए और हमेशा के लिए खूबसूरत हो जाइए। अच्छा फरवा बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं जी और अलीशा कहती है कि मैं तुम्हें इतना सोचती हूँ कि तुम मुझे दिखाई देने लगती हो। अरे भाई बाप रे मोहम्मद मीरन जखरानी में सुन रहे हैं जेकब आबाद से बहुत शुक्रिया प्यारे भाई को वेलकम हो गया। बशीर बलोच हमारे साथी वाले को मसला में ठीक हूँ आप बताएं कहते हैं आपका शो सुन रहा हूँ कराची कास अच्छा कायदाबाद से बशीर अहमद बलोच एंड आरजे नूर मोहम्मद भुट्टो को सलाम ओके हो गया भाई जी कहते हैं आपका शो सुपर से भी ऊपर आपकी वॉइस माशाल्लाह लाजवाब है अदी जियो तमाम भी जियो भाई पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाए पो जियो हाँ जी।

अरे चाचा कहते हैं के कोने खाना के कुंड खा दुनिया जे डी स्किन ब्यूटी क्रीम शो बुधी रहा हां जी दुनिया जे सजी कुंड खा सा के मानु बुधन पया एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल भी कन पया तो या तांगे खबर रहे तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ पाकिस्तान में न बल्कि बाहरन मुल्कन में भी तमाखी मिली रही है अगर तमा जो फर्ज काडे बाहर वणण जो इरादो थे तो या ता वनी रहा हो तो टेंशन न वठो बाबा उते भी तांगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिलंदी सो फिलहाल तो तुम इत आयो मौजूद पाकिस्तान में लाड़काने में या सिटी केड़े भी खा तुम ताल्लुक है तो तुम पाजे करीबी जनरल स्टोर से हलिया वनो तो नालो वठी तलब कयो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम डे डी स्किन ब्यूटी क्रीम की निशानी डॉक्टर माइक जो फोटो अथस जेके जेके बेचारा पढ़ियल ना मानू जिनके नालो न इंदो आहे पढ़न तो वो इन निशानी ते वनी पाने करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम के वठी अचो था इहा निशानी आहे बाबा तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के मथा एक डॉक्टर माइक जो फोटो आहे उन अलावा बाकी जेके पढ़ियल आन वे तो नालो डिसी करे डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी अचन था सो तवा भी वठी जो तवा भी सोना थियो बाबा तवा जो भी पूरो पूरो हक आए खूबसूरत थियण आई पोस्ट के लाइक एंड शेयर करना हलो अच्छा जान मोहम्मद खास केली भाई कहते हैं हम भी सुन रहे हैं भाई जान आपको भी वेलकम कहते हैं आबिद भाई कहते हैं कि हम आपका प्रोग्राम बेरिया रोड से सुन रहे हैं थैंक यू वेरी मच आबिद भाई और जेफ लिखते हैं कि 2 साल से आपका शो सुन रहा हूं आज फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है अरे भाई 2 साल से सुन रहे आज पहली बार आए ऐसी भी क्या मजबूरियां कि 2 साल सिर्फ सुनते ही रहे हैं फिर तो आपको मेरे प्रोग्राम की सारी बातें पता होंगी आपको ये भी पता होगा कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप क्यों इस्तेमाल करेंगे तो मुझे बताइए जल्दी से और जान मोहम्मद खास के लिए कहते हैं जबरदस्त प्रोग्राम जबरदस्त आवाज थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई आज मोहम्मद गोला भाई जगह बाबा से हमारे साथ मौजूद है थैंक यू प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है मैं जल्दी से आपके कमेंट्स पढ़ूं ये ऊपर भागते जा रहे हैं बिलावल हमारे साथ है बिलावल वसन वसन आबाद शहर खां तमासा के ज्वाइन कयो आए थैंक यू नरेश हमारे साथ मौजूद है नरेश लिखते हैं सलाम आदाब ऑल ऑफ यू वॉचिंग फ्रॉम इंडिया यो इंडिया वाले भी आ चुके हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए इंडिया वालों आप भी लगाए

0: सूर।
1: भाई ये है बलोची गाना, लेकिन ये इसकी वाइब इतनी कमाल की ना कि सुन के बड़ा ही मजा आ जाता है। और आप पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। फहीम भाई लिखते हैं कहता डी स्किन का फेस वॉश मेरे सामने पड़ा है, कमेंट में फोटो भेजने का ऑप्शन नहीं आ रहा, नहीं तो हाँ जी आप मुझे फोटो भेज देते। ठीक है ठीक है, तमाम यकीन ट्रस्ट आता वहां से। उजैफ लिखते हैं कि आजकल सारे शायर बने फिर रहे हैं। हाँ भाई मोहब्बत कुछ चीज ही ऐसी है। दर्दे दिल हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून, कैसी हैं स्वीटी। बिलावल भाई कहते हैं कि तमाम बेहतरीन प्रोग्राम वसनाबाद शहर खां तमा के बुद्धि रहा आयो सभी तमाम सुनन दोस्तन के सलाम दिना एंड सो वालेकुम अस्सलाम। नरेश भाई लिखते हैं कि नाउ इंडिया टाइम ठीक, हां जी इंडिया आधा घंटा आगे है। अच्छा दर्दे दिल कहती है कि सारी ख्वाहिशें अगर पूरी होती तो शायद तकदीर की खूबसूरती खो जाती, कुछ ना मिलता भी कभी कभी, कुछ ना मिलना भी कभी कभी नसीब की मेहरबानी होती है, और बेशक अल्लाह का हर फैसला बेहतरीन होता है, बेहतरीन से भी बेहतरीन होता है।

वक़्त में मुआहदे अमल दरामद मनसूबो जमा करण ते इतफ़ाक़ कयो। मुआहदे में दहशतगर्दी जे ख़ात्मे जे सूबाई ज़िमेवारी ऐं हथियारबंदनि फ़ौज सां सहकार वधाइण शामिल आहे। पुलिस एक्ट 2026 ते नज़रसानी दहशतगर्दनि खे सूबे में कार्रवाई या महफ़ूज़ ठिकाणा ठाहिण लाइ रोकण ते बि इतफ़ाक़ कयो वियो। गुज़र राति हुकूमत ऐं अपोज़िशन विच में ॻाल्हियूं बिना नतीजे ख़तम थियूं ऐं ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौर बि तय न थी सघियो। केपीए जे वॾे वज़ीर सोहेल आफरीदी ॻाल्हियुनि जी कमेटीअ खे जारी कयल मसवदो जारी करे छॾियो। सोहेल आफरीदीअ चयो त ड्राफ्ट में को बि गैर क़ानूनी या गैर क़ानूनी हक़ न आहे। मुतालबो त वज़ीर आज़म अपोज़िशन लीडर जे मुलाक़ात जो बंदोबस्तु कयो वञे।

M6 मोटरवे ठहण लाइ 30 सालनि खां आसरा ॾींदड़ वफ़ाक़ी हुकूमत पारां ईंदड़ महीने सखर हैदराबाद मोटरवे M6 ठहण वारो कमु शुरू करण जो ऐलान। वफ़ाक़ी वज़ीर अलीम ख़ान चयो आहे त 30 सालनि खां देरि जो शिकार मोटरवे जी तमीर शुरू थियण खां वञे पई। MQM6 जहिड़े तारीख़ी मनसूबे खे अमली शिकिल ॾियण जो मौको मिली रहियो आहे। M6 मोटरवे सिंध समेत सॼे पाकिस्तान में वापारी सरगर्मियुनि खे हथी ॾींदो। M6 मोटरवे मनसूबो सिंध ऐं पाकिस्तान जे तरक़ी लाइ अहम साबित थींदो। KP में सिक्योरिटी फोर्सेस जी कार्रवाई 8 दहशतगर्द मारिजी विया। DI खान में दहशतगर्द जी मौजूदगी जे गुझे इतलाह ते ऑपरेशन कयो वियो। सिक्योरिटी फोर्सेस मूजिब ऑपरेशन में मारिजी वियल फितनल ख़ारिज जा 3 कमांडर बि शामिल। मारिजी वियल दहशतगर्दनि वटां वॾे अंग में हथियार ऐं परॾेही करंसी हथ।

अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ईरान खिलाफ़ ॿीहर फौजी कार्रवाई जो इशारो ॾेई छॾियो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान तबाह थी चुको आहे, हाणे सुवाल इहो आहे त मामिलो सवलाईअ सां हल थी वेंदो या ॾुखियाईअ सां। ईरान एटमी हथियार हासिल करण वारे मनसूबे में बि हथ खणी वियो आहे। ईरान पारां पंजनि ॾींहनि में आबनेरुस में 7 आयल टैंकर्स खे निशानो बणाइण जी दावा ईरानी ख़बर एजेंसीअ मूजिब कुवैत जे ॿिनि अरब इमारात जे टिनि जहाज़नि खे निशानो बणायो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प जे आबनेरुस खुलियल हुजण जी दावा बावजूद कार्रवाई जारी रहियूं। ईरान शर्तूं पूरियूं न थियण ताईं आबनेरुस न खोलींदो। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकर कालीबाब चयो आहे त ईरान जो मौक़ो मुकमल तौर वाज़ियो आहे त अमरीका जेसीं ताईं इस्लामाबाद मफ़हम यादाशनामे में तय थियल 17 ईरानी शर्तूं पूरियूं न कंदो, आबनेरुस बंदि रहंदो। अमरीका खे समझणो पवंदो त मामले खे ड्रेग ॾियण जो वक़्तु ख़तम थी चुको आहे, हिक तरफ़े मुतालबा तस्लीम करण जो दौरु हाणे न आहे रहियो। सिंध यूनिवर्सिटी जामछोरो में तालीमी साल 2027 जे बैचलर डिग्री प्रोग्राम जी प्री एंट्री टेस्ट वरिती पई वञे। पहिरें मरहले में टेस्ट में सिंध जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि मां 8,000 खां वधीक उमेदवारनि हिसो वरितो। बैचलर प्रोग्राम लाइ 19,416, मास्टर्स ऐं बीएस टिनि सालनि लाइ 3,095 उमेदवारनि रजिस्ट्रेशन कराई।

0: दौरान हथियारबंदनि जी फायरिंग में ॿ पुलिस अहलकार ज़ख़्मी। लाहौरी पाड़े में चेकिंग दौरान ॾोहारनि पुलिस मथां फायरिंग करे ॾिनी। गोलियूं लॻण सबबि अहलकार अली ज़े बबड़ो आशिक पुल ज़ख़्मी थी पिया। पुलिस जो चवणु आहे त अहलकार चेकिंग करे रहिया हुआ त मोटरसाइकिल सवारनि खे बीहण जो इशारो ॾिनो। न बीहण ते अहलकारनि संदन पीछो कयो त ॾोहारनि मथां फायरिंग कई। सोभो दोरो वाह खे गुज़िरियल राति खां लॻल घारो बंदि न थी सघियो। वाह खे घारे सबबि कमंद वण ऐं केलनि जे बाग समेत ॿियो फसल पाणी हेठि अची वियो। इलाइक़े वासियुनि पंहिंजी मदद पाण तहत राति खां वठी घारो बंदि करण जे कोशिशुनि में रुधल। सकंड में जवाबदार नींगर खे नशो ॾियण बैदि मुबैना बदफिले जो निशानो बणाए फिटो करे विया। खानज़ादा पाड़े जे रहवासी नींगर खे बदफिले जो निशानो बणाए ज़ीरो पॉइंट वटि फिटो कयो वियो। वारसन चयो आहे त नींगर गुज़िरियल राति खां गुम हो। माण्हुनि नींगर खे खणी आया। माण्हुनि ॿुधायो त ज़ीरो पॉइंट वटां मिलियो आहे। नींगर ते तशदुद बि थियल आहे। जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे इंसाफ़ फराहम कयो वञे। मटियारी भरिसां तेज़ रफ़्तार कार ड्राइवर जो रोड पार कंदड़नि खे चकर। चार ॼणा ज़ख़्मी। क़ौमी शाहराह ते तेज़ रफ़्तार कार ड्राइवर जे कंट्रोल मां निकिरी वई। रोड क्रॉस कंदड़नि खे टकर हयो। चार ॼणा ज़ख़्मी। हादसे में दिलशेर हमज़ा बासित शिराज ज़ख़्मी, इस्पताल मुंतकिल। खेरपुर में इलेक्ट्रिक जे दुकान में शॉर्ट सर्किट सबबि बाहि लखे रुपियनि जो सामान।
1: मेरी तो हर सेंस आज नॉनसेंस हो गई है।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: Brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
4: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
1: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
0: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
2: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
2: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
0: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है
4: सुपर वाइट।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
6: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियन, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी, औरतुन बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: याद रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347।

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आस पास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खुशख़बरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम।
5: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 0331-252-5786।
3: जी हा, 3135-5576।
5: GAFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

यानी कि मुनासिब कीमतों में आपको मिलने वाले हैं, तो बस आप जाइएगा और परचेज करके देखिएगा और इसे हर कोई अफोर्ड कर सकता है, ये चीज तो मेरी आप याद ही रख लीजिए। उनके अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना, जी अंदर वाइटामिन बीट्स आहिन, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन आहिन, ये जो चीजों आए ना, वाइटामिन बीट्स माइक्रो बीट्स, ये बाबा फेशियल के अंदर ये चीजों एड थियल होंदियों आहिन। इन ही वजह से डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ना फेशियल की क्वालिटीज अची वही आज, तो अवां के जो रिजल्ट मिलंदा सुठा वारा, वो इन ही चीज के करे मिलंदा। पूरे पाकिस्तान में दिसो था तमा केडा प्रोडक्ट्स आहिन, तो उनन हेडन सारे प्रोडक्ट्स में डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर वाइटामिन बीट्स आहिन, माइक्रो बीट्स आहिन, बटे बिया प्रोडक्ट आहिन पूरे पाकिस्तान में जिन के अंदर ये चीजों एड थियल आहिन। अगर तमा वट कोई सुठो प्रोडक्ट आहे मौजूद, तो उनमा फायदो वठो बाबा, इस्तेमाल कयो आई सोना सोना थी वनो। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना, ये दो दिनों में आपको रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है। और साथ ही साथ अगर आप डी स्किन का फेस वॉश इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, इसकी तो क्या ही बात बताऊं, क्योंकि इसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, चाहे आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, मर्द हसरात खवातीन, हर कोई डी स्किन का फेस वॉश इस्तेमाल कर सकता है। ये इतना क्रीमी सा फेस वॉश है और डी स्किन के फेस वॉश के अंदर हाइलोरोनिक एसिड सीरम एड किया गया है। और ये जो हाइलोरोनिक एसिड सीरम होता है ना, ये आपकी स्किन के अंदर तक जाता है, आपकी स्किन पर ये जो गर्द गुबार जमा हो जाते हैं, गंदगी जमा हो जाती है, डस्ट पॉल्यूशन जमा हो जाता है, और मर्द हजरात खास करके अपने स्किन के सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए तो भाई बेस्ट तरीका है कि आप बस डी स्किन का फेस वॉश यूज कर लीजिए। और डी स्किन का फेस वॉश सिर्फ यूज करना ही काफी हो जाता है, आपके चेहरे पर ये तमाम चीजें रिमूव हो जाती है, आपके चेहरे की स्किन जो है वो हाइड्रेट हो जाती है, आपकी चेहरे की स्किन मॉइस्चराइज हो जाती है और आप ग्लो करते रहते हैं। तो ग्लो कीजिए और खूबसूरती की दुनिया में आप भी कदम रखिए और आप भी इस्तेमाल कीजिए डी स्किन फेस वॉश एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे जरूर बताया करें, क्योंकि मुझे पढ़कर और सुनकर बड़ी खुशी होती है कि मेरे जो लिसनर्स हैं वो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करके वाकई अच्छा रिजल्ट्स हासिल कर चुके हैं। और साथ साथ आप लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम के दूसरे घंटे में। जनाब आपकी मोहब्बतों, समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बताइए वो कौन सा एनिमल है जिसके अगर जिस्म का कोई पार्ट कट भी जाता है तो वो दोबारा से जो है ना वो रीजनरेट हो जाता है, दोबारा से वो पैदा हो जाता है। और इस सवाल का आपने मुझे जवाब देना है। अगर आप मुझे 8881 पर ज्वाइन कर रहे हैं या फिर आप मुझे फेसबुक पर ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारे साथ मौजूद रहिए, फेसबुक की पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर किया करें, ठीक है, ये चीज बड़ी जरूरी हो जाती है, तो लाइक और शेयर किया करें। और मुझे बताएं आप भी हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम का हिस्सा है। मेरे पास आप लोगों के लिए गाने मौजूद हैं जी प्रोग्राम के अंदर, तो गाने बिल्कुल आप लोगों को सुनाते जाएंगे। हाँ जी, तो ऐसा करते हैं ये वाला गाना सुन ही लेते हैं। और इस गाने की फरमाइश फरवानी करती थी, काफी दिनों से उनका गाना जरा इग्नोर हो रहा था, तो आज फाइनली उनका गाना एंजॉय करते हैं और आप हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम।

योगी जी बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा गाना सुनेंगे, साथ साथ आप लोगों के मैसेजेस हैं तो उनकी जाने भी आ जाते हैं। और यहाँ पर हाँ जी गाना सेट कर रही थी मैं जरा। ओके सो यहाँ पर हमारे साथ हैं, एक मिनट में पैनल की जानेब आ जाती हूँ। और हमारे साथ हैं ये गोट मोहम्मद तैयब थेबू का हबीबुल्ला थेबू भाई, कहते हैं आपका शो वेरी नाइस, सलाम आपको जी, वालेकुम अस्सलाम। मीरपुर खासी अब्दुल्ला महर भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी, वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर रहे हैं आप और आपकी फैमिली, क्या बात है। गोट मोहम्मद तैयब थेबू का हबीबुल्ला थेबू लिखते हैं कि सॉन्ग बुधरायो नुसरत फतेह अली खान का, गम हो या खुशी हो तुम मेरी जिंदगी हो तुम, यो गाना दर्जू मावेसी भी हलाया हाँ, सो थैंक यू थैंक यू। मकसूद मल्हा कहते हैं हेलो सदरा मुस्कान, मुझे शमन का गाना सुनाना, ओके आई ट्राई। और उनके अलावा गोट नबी दाद बम्बरो नारू खाए माम डिनो बम्बरो कहते अधिक खुश हो, असी भी तवा जा आयो भाईर, जी जी बिल्कुल तव मुझा सोना भाईर आयो, तवा वरी जदे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करना पो सफा सोना सोना थी वेना, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल लाजमी कजो। इरम कहती है इरम ओ वेठी वेठी इरम के भी अलाए छा थी वेंदो आ बाबा, इरम एडी एडी गालू कंदी आ मतलब डिसी करी मुखे खिलेंदी आ एडी का गाल को निका इरम तवा आजा ही वहम कयो आहे हां जी। और ये हमारे साथ गोट गुलाब लगारी खान साबिर लगारी सुल्तान लगारी रिजवान लगारी वालेकुम अस्सलाम कहते हैं आपका शो नाइस है। अच्छा ये मुझे ख्याल में भात वहाँ गानों लिखियो है सो मैं कोशिश क्या थी ताजी पसंद जो गानों हलाईंदी ठीक है। और हमारे साथ दादू खान इमदाद जतोई अब्दुल खालिक जतोई मुबशर हुसैन जतोई किफायतुल्ला जतोई फारूक हैदर जतोई सॉन्ग मास्टर मंजूर एक मानू जे सर जे खातिर है हेवा जो गानों बुधायो तव मैं कोशिश क्या थी गानों तक बुधवाईंदी। और हमारे साथ ही हमारी फजली फजली कहती है हां जी लाइव आयो सफा जिंदा दिसो न। अच्छा दर्दे दिल कहती है कि सुनो चंदा मेरी मसरूफियात के लम्हों में चैन की घड़ी है तो आगे तुमको पता है जी जी आगे तो मैं सबको जानती हूँ। और हमारे साथ ये अस्सलाम वालेकुम उस्ताद सिडोबा जी, उम्मीद है कि आप बहुत खुश होंगी, आप मोरों में भी अवेलेबल करा देना डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स ताकि और आसानी हो जाए स्पेशली मेरे लिए। और एक सवाल था वैसे मोरों में तो ऑलरेडी मिल रही है तो आप जरा अपने करीबी जनरल स्टोर से जाकर मालूम लीजिएगा ठीक है। और अपने सवाल क्या पूछा ही लिखते हैं हाँ लिखते हैं कि एक सवाल था मुझे उसका जवाब नहीं आ रहा था प्लीज आप बता दीजिए, अंधेरा जब रात को होता है तो सूरज दिन को क्यों निकलता है, अगर सूरज की दुश्मनी अंधेरे से है तो रात को निकलता क्यों नहीं, आपका शागिर्द मोरू से फिर दोस्त भाई हमारे साथ है। देखिए कितना मासूमाना आपने सवाल पूछ लिया, एक तो उसे जनरली अगर देखा जाए तो ये सवाल इसका जवाब ये हो सकता है कि भाई अल्लाह पाक ने देखे ना सारी चीजें अपनी तरतीब से तैयार रखी है। एक कौम थी जिसके ऊपर ऐसा था कि उनको जो ना सिर्फ रात ही रात दी गई थी तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो गई थी, तो ऐसा वाला सीन है कि दिन अगर ऐसा है कि सूरज जब रात को निकले तो या दिन को निकले एक ही बात है ना, क्योंकि रात वाला पाक ने आपको आराम के लिए दी है तो अगर रात को भी सूरज निकला तो फिर मसला हो सकता है, तो अगर रात आपको आराम के लिए दी गई है तो आराम कीजिए क्योंकि सूरज का काम है दिन में निकलना और ताकि आप अपने लिए अच्छे से दिन को गुजारें काम करें खाएं पिएं और रात फिर जब हो जाए तो आप सुकून से सो जाइए और नींद और आराम भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए अल्लाह पाक ने ये चीजें तरतीब से रखी हुई। अगर थोड़ा इस तरह का सीन हो जाए ना कि देखें सूरज ही सूरज हो और रात हो ही नहीं तो फिर मसला हो सकता है, इसीलिए जो चीज जिस तरह है लॉजिकल देखा जाए तो ये जरूरी है। और फिर दोस्त भाई आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए क्योंकि मोरों में आपके लिए हमने अवेलेबल करा दी है पहले से ही, आप बस जाइएगा और अपने करीबी जनरल स्टोर से जो है ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करके आइएगा। वैसे डी स्किन का फेस वॉश भी आप यूज कर सकते हैं तो वो भी आप परचेज कीजिएगा।

क्या बात है जनाब, बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना एंजॉय करें। और साथ साथ अगर आप भी जे स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं तो हमें जरूर बताया करें। और चाचा आपने टॉपिक का जवाब दिया है, ओके हो गया जी। और जान मोहम्मद खास के लिए भाई कहते हैं आपका अपना लिसनर कोट, अच्छा कोट गुलाम मोहम्मद से जान मोहम्मद खास के लिए आपका प्रोग्राम जबरदस्त है, थैंक यू वेरी मच, आपको वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। और साथ साथ जो है ना जी जी बिल्कुल, आप लालकाना से रेशम गली में कहीं पर भी आप किसी भी शॉप पर चले जाएं, वहां पर आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल होगा और मिल जाएगा सुकून से। तो लालकाना के लोगों के लिए तो कोई मेरे ख्याल में टेंशन की बात नहीं है, वैसे तो हर जगह हमने अवेलेबल करा रखे हैं, चाहे आप मोरो से हैं, मीरपुर खास से हैं, मटियारी से हैं, सकरंट से हैं, मातली से हैं, नूरियाबाद से हैं, सखर से हैं, तो हर जगह से जाकर आप इजीली डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं।

अच्छा फहीम भाई, आप मिलिएगा, लेकिन बात कराने वाला सिस्टम जो ना ये जरा क्लोज है, तो बात नहीं हो सकती, बस आप उनसे मिलिएगा और डीज कैन ब्यूटी प्रोडक्ट्स परचेज कीजिएगा। और उनखा अलावा जेको आ सपोज की तमाम लाइक एंड शेयर को जल्दी करी बैठो। वहीद वफाई भाई, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, कहते हैं आपका शो माशाल्लाह बेहतरीन है, जेका पावा से आप हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू के साथ आपको वेलकम कहते हैं। और इकबाल आशारी हमें बिल्कुल खास से सुन रहे हैं, इकबाल भाई आपको भी वेलकम कहते हैं, और आप भी डीज कैन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर सकते हैं। और साथ साथ हैं जी हमारे साथ उज़ैफ, कहते हैं हाँ हाँ सब पता है, चले जी अच्छी बात है, और कहते हैं इंडिया वाले जी इंडिया वाले तो इस्तेमाल करेंगे लाजमी डीज कैन ब्यूटी प्रोडक्ट। और प्रिंस मोहसिन लाशारी, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ प्यारे भाई, आप बताएं कैसे हैं, ठीक ठाक है, मजे में। और ये जी चाचा ने हमारी पोस्ट को इंडिया तक पहुंचा दिया है, बहुत अच्छा किया चाचा आपने। और रशीद भाई, बहुत शुक्रिया, आप हमें हैदराबाद से सुन रहे हैं। और हमारे साथी आबिद भाई कहते हैं शुक्रिया मैडम, कोई बात नहीं प्यारे भाई। और कासिम सुमरो हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, आपने भी हमें इंडिया से ज्वाइन किया है, कासिम सुमरो आपको वेलकम एंड खुश आमदीद कहते हैं। और प्रभांजन त्रिपति हमारे साथ है, प्रभांजन त्रिपति जी आपको भी वेलकम हो गया, आप भी हमें इंडिया से सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया के साथ आपको भी वेलकम कहते हैं। अख्तियार कोसो भाई हमें हैदराबाद से सुन रहे हैं, भाईजान वेलकम। सुफियान अहमद, वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ आप बताएं कैसे हैं। अब्दुल अजीज सुमरो भाई, वालेकुम अस्सलाम।

0: करें क्यों जिक्र हो।
1: बिल्कुल जी सर, तो आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम देने वाली है जो कि सिर्फ और सिर्फ दो रातों में, तो लाजमी लगाइएगा और कमाल देखिएगा। इकबाल आशारी भाई ने आपने टॉपिक का जवाब दे दिया है, बहुत शुक्रिया। अबू हनीफ अल बलूची लिखते हैं कि इन फूल फरोशियों को कैसे समझाऊं, उसकी खुशबू सिर्फ उसी से आती है, प्लीज सॉन्ग। अच्छा मैं ॾिसां थी इहो गानो मूंखे मिलियो त तव्हां जे लाइ हलाए वठूं था, ठीकु आहे। सो थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और इसी के साथ रमज़ान भाई भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, रमज़ान भाई आपको भी वेलकम करते हैं। इसी के साथ यहाँ पर टाइम हुआ है जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं, आप सुनिए जरा तलहा साहब की बात और मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ। सोसाइटी स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाइए और आप भी खूबसूरत हो जाइए।
0: दिल मेरा साफ में इंडस्ट्री का वो राज भाई, डरते मुझसे आज भी शाहीन आता बाज नहीं भाई, फुल 50 तलहा जाने खोला हाथ नहीं, कागज को मैं आग दूं पिछवाड़े इनके राख भाई, सर अब दिल में असर है तो शिकवा करें क्यों, जिक्र होता है हर महफिल में, वो चाहते पर दिखता नहीं हूँ, दिल में सवाल बड़े पीछे हुए जाल बड़े।

0: अरे नहीं, खुश्क और बेरोनक की स्किन और इन्हें जलाए छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जिनमें आहिन चार रंग की खूबियों आई कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे आई चांदन जी खूबियों जिंद में फाइन लाइंस एंड झुरन के घट कर आई रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिम ईहन में जिंद के बढ़ाए नरम मुलायम एंड ब्राइट उन सा गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैसी हर कतरे सा चेहरे के मिले अधिक खूबसूरती हर हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
1: छा तव्हां जोड़नि जे सूर पुठनि जी तकलीफ़ कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि पुठनि कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 0312-34-01-287 ख़ात्माए दर्द कोरस सूर खां छुटकारो सुकून भरी ज़िंदगी
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
2: अम्मा आयशा

0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
1: के तरीके कार वो जरा इसके पर देते हैं कि वो ऐसे लगाते हैं जैसे आप कोई फेशियल कर रहे हैं। तो जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करें अप्लाई करें तो लगाने के तरीके कार भी आपको आने चाहिए। आप रात के टाइम इस्तेमाल करें डी स्किन ब्यूटी क्रीम को, क्योंकि दिन में वैसे ही आपको बहुत सारे काम होते हैं, तो आप दिन में नहीं आप रात में इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम। रात में बस सुकून से अपना फेस वॉश कीजिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई कीजिए और उंगलियों की मदद से आराम आराम से लगाइए, प्यार से लगाइए, होले होले लगाइए और इस तरह लगाइए कि क्रीम थोड़ी आपके चेहरे पर नजर आनी चाहिए। जब आप ये प्रोसेस सही से करते हैं तो क्रीम आपकी, ऐसा होता है ना कि जो लोग क्रीम लगाकर स्किन के ऊपर मसाज करने लग जाते हैं, तो मसाज नहीं किया करें भाई, सुकून से लगाएं, प्यार से लगाएं। क्रीम खुद ही आपकी स्किन के अंदर जज्ब हो जाएगी और आपको अच्छे वाले रिजल्ट देना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट जो है वो मिलते रहेंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए, डी स्किन का फेस वॉश लगाइए। अगर आप ऑलरेडी लगा रहे हैं तो हमारे साथ रिजल्ट लाजमी शेयर कीजिएगा। उनके अलावा बाकी जगह सोना सोना माण्हू असांखे ॿुधनि पिया सभी की चौथा बाबा भली करी आया प्रोग्राम जी लास्ट लिंक में जिन मानन अन्य पांच करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल न कराया हुआ है तो तवा भी अवेलेबल कराए सको था। बस तवा की जगह नंबर्स बुधाई दिया है उन नंबर से रातों को जिन मानन अन्य नंबर्स नोट नाइन गया तो नंबर नोट कर हाँ तक बुधाया थी। ओके जी, सो नंबर है 03-12-50-25-907 बुरी 312 पंजाह 25 970 आई बियो नंबर आहे 033-27-38-4309 बुरी 332 73-84-309 ही बई नंबर सां जेके तवा डायल करे पंहिंजी करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश के अवेलेबल कराए सको था। सो इस्तेमाल करते रहिए और आपको जो रिजल्ट्स मिलते जा रहे हैं वो हमारे साथ शेयर जरूर किया करें।

ये बात है थोड़ी, ना सोना ना चांदी ना कोई महल। चलें भाई, सही बात है, आजकल सब यही चाहते हैं। अगर ये नहीं मिलेगा तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन, आई थिंक सो। सही बात है। अगर ये पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। वैसे कुछ लड़कियां और ये ऐसी होती हैं, अगर उनको सब कुछ भी दिया जाए तो फिर भी वो खुश नहीं होते। खैर जी, अपनी अपनी बात है। और किशोर भाई कहते हैं कि हिन्ना भाखे चो हुन्ना मुल्क में वञे जिते छह महीना रात ऐं छह महीना ॾींहुं हूंदो आहे। ॾिसो हुननि माण्हुनि जी ज़िंदगी केॾी मुश्किल आहे, कॉम्प्लिकेटेड। सो अदे खे वाकई थोरो घुमणो फिरणो पवंदो। और फई भाई, हांजी हांजी, फरवा फारवा खाईंदी बाबा, तव्हां इहा टेंशन छॾे ॾियो हाणे। अख़्तियार कोसो भाई कहते हैं, आप जब जाती हो तो आपका अरे भाई आप पता नहीं क्या बात करे, मुझे आपकी बात ही समझ नहीं आई। बस आप जरा डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिएगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर हमने अवेलेबल करा दी है। और हुसैन हमारे साथ हैं, हुसैन जट भाई, वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं नूरियाबाद से वसीम आपको सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया भाई को वेलकम कहते हैं। रमजान भाई मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं।

राजा किशोर भाई लिखते हैं कि टॉपिक थे जवाब थर्सडे को मैंने सही दिया था, कल भी मैंने नहीं सुना आपका जवाब, आज भी जवाब भूल जाओगे, इसलिए नदी नवे से तमाम जवाब किए मतलब असा फर्स्ट में क्या छोटा आया ही लेट आयो तो लोगों ने दे दिया है जवाब, ठीक है आप बैठ जाइए अपनी सीट पर। और इकबाल भाई आपने भी टॉपिक का जवाब दिया, ठीक हो गया।

ओके रे, सो गाना खत्म हो चुका है, दूसरा गाना हम लगा देंगे जो होने वाला है मास्टर मंजूर की आवाज में। एक भाई ने फरमाइश कर दी थी तो जरा हम इस गाने को भी सुन लेते हैं, और ये हमारे साथ मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई, आप हमें सुन रहे हैं, कहते अदी केड़ा हाल है तमाम जा लता जुड़ू आवाज बाबा ये कुछ ज्यादा हो गया मैडम लता की क्या बात। और कहते हैं कि तमाम जो सदाकत हुसैन मीरानी भाई हमारे साथ हैं, साहब बच्चन शामियानी सखर से, हेल्पलाइन सेल ते राबतो कयो आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड फेस वॉश सखर सिटी वन थो त खरीद करे इंदस। ओके भा ओके तमाम लाजमी खरीद कजो। थैंक यू सो मच तहां असे प्रोग्राम में मौजूद आए। वैसे लता मैडम जो तहां नालो वरतो तो ये गाल मुख याद अची वही। दिसो जिंदगी जेका है ना केतरी हर इंसान पाने जिंदगी का खुश कोने को। मुखे एकड़ो मैडम लता जो इंटरव्यू मतलब मु डठो हो जेमे मैडम यू चयो हो त उनका एकड़ो सवाल पुछो हो त अगर मतलब ताके बियो जन्म मिले त छा ता बे जन्म में भी लता मंगेशकर थेन चाहिदा त उनते मैडम जो एकड़ो जवाब मिलो वो मुखे एतरो मतलब इंप्रेस करे चुको मुचे जाई भी यार ही आ है। अगर असा का भी कोई पुछे त तमा अगर जेको जिंदगी तमा गुजारिया छा बियो दफो ताके मौके मिले त ता वो गुजारिंदा त मैडम एकड़ो जवाब दनो तो कदे भी मैं लता न थिंदम छो त लता ये जिंदगी में जेके तकलीफ दुख है वो सिर्फ लता के खबर आ है। सो या चीज वाकई मु ता नोटिस कई त अगर तमा यो सवाल के खा भी पुछो चाहे वो केतरो फेमस आ है केतरो रिच आ है त बाजार त तमा के खुश नजर इंदो पर वो आ चीज उना के खबर नी त होने जिंदगी में छा पे हले असा के डिसी करे लगंदो बाबा वाह मैडम लता सारी दुनिया उन जी दीवानी उन जी आवाज जी दीवानी आई छा ना है न हुयो न वट पर उन का पुछो तो न चो मा कदे भी पानी जिंदगी में बिहर लता न थिंदस। या चीज आ है इंसान के कुछ भी मिली वने तो छा भी उ हासिल करी वने पर उ पानी जिंदगी में सैटिस्फाइड मुखे लगे तो कदे भी न तो थी सके। बस शुक्र गुजारी इंसान के अंदर होजन जरूरी आ है आई जेको ता वट आए उन में खुश रहंदा करे आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल भी कंदा करे। अच्छा दादू का इम्ताज तो अब्दुल खालिक जतोई मुबशर हुसैन जतोई किफातला जतोई फारूक हैदर जतोई सॉन्ग मास्टर मंजूर ओयो बाबा हले तो गानो तो एंजॉय करो। और ये मौजूद है वालेकुम अस्सलाम सदाकत हुसैन मीरानी साहब बच्चल शामियानी सखर से, सिस्टर मेरा पहला वाला एसएमएस नहीं नहीं आपका पहला वाला मैसेज मैंने पढ़ लिया और कहते हैं आप बहुत शुक्रिया जी आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। और आपने लिखा है कि तारिक भाई से बात हो गई है और यस भाई तारिक भाई आपको अच्छे से गाइड कर देंगे कि आपने कहां से जाकर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का परचेज करना है। उन्होंने आपको बताया बिल्कुल इसी शॉप से जाकर आप जाइएगा और परचेज कीजिएगा चाहे आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स परचेज करें या फिर व्हाइट एज के परचेज करें। बात एक ही है मकसूद मला हमारे साथ कहते डी स्किन ब्यूटी क्रीम आई हाय मुझे पता है मैंने यूज कर ली है जी बिल्कुल ऐसे यूज करते रहिए। और ये हमारे साथ ही जयपाल भाई कहते हैं हेलो आरजे भाऊ आप हो ना सफा मवेठिया है बाबा तां दिल जाए कयो कमकार करे तो और गोठ मामन थेबू का हबीबुल्ला थेबू भाई शो तुम्हारा लाजवाब है। थैंक यू वेरी मच सोना भा।

अच्छा तारिक भाई ने एक मैसेज भेजा, कहते हैं ये लाजमी पड़े मैडम सिद्रा हमारे अच्छे कस्टमर हैं। ओके सज्जाद रुस्तमानी माथली से हैं, मैसेज लिखा है तमाम शायरी लिखिया मुझे ख्याल में। सज्जाद भाई लिखते हैं कि जिते माँ जावस उन्हें शहर की घिटी में पहरे जवान थियस ए माथली तोखे मुझा सलाम गाया मा तुझा केड़ा कलाम अमन आहिते जो तू आही शहर वन्या भी थो तुझे सीने मा सेर कया थो ए हीरो आहिन तुझा गुलाम ए माथली तोखे मुझा सलाम गाया मा तुझा केड़ा कलाम गाया मा तुझा केड़ा कलाम ए माथली तोखे मुझा सलाम। सज्जाद रुस्तमानी भाई माथली से मैं ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया। और सज्जाद भाई भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं, जबरदस्त हो गया। रमजान भाई आप भी इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। उजेफ लिखते हैं कि बस आवाम चुप रहेगी तो ऐसा ही होगा। शुएब अली हमारे साथ हैं जी, आपको वेलकम कहते हैं, आपने शमन का गाना सुन लिया होगा। और महर इरफान सियाल साहब लिखते हैं कि ग्रेट प्रोडक्ट्स डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, यस सर।

मैडम सनम ने भी बड़ा गाना अच्छा गाया है, नेक्स्ट टाइम वो सुनेंगे। अच्छा, आबिद बिरोही हमें सुन रहे हैं, कहते हैं सो गुड शो, थैंक यू। वहीं भाई कहते हैं कि झंडो मरी वाले कहाँ गुम हो गए बाबा, तहां झंडो मरी वालन के एडो याद कयो जो झंडो मरी वारा बजी वया। वाकई हाँ नजर न था।

अरे चाचू जी, तो झंडो मरी वाले सोना चांदी और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने गए। सोना चांदी तो लगा नहीं सकते, लेकिन डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएं और खूबसूरत हो जाए। इनका अलावा जेको आज सुधु चे तो आजकल ये सब नहीं दे सकता तो लड़की कहेगी सही बात है। नूर खान में सुन रहे टॉपिक ओके। प्रिंस मौसल आशारी भाई, आपको बहुत शुक्रिया, आपने शायरी भेज दी है। और ये हमारे साथ है अली मुर्तजान सारी, कहते कैफा हालुक या हबीबी, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं, कहाँ गुमसुम है। अच्छा सरफराज अली, गुड आफ्टरनून, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं, ठीक ठाक है, मजे में है। ओके आप हमारे साथ ही अल्ताफ अली गादी बलोच फ्रॉम कराची, थैंक यू जी, आपको वेलकम कहते हैं। उजैर कहते हैं बहुत जहीन लोग हैं यहाँ तो आप तो पहले से जानते हैं ना, तो समझ जाइए। हमें लड़ाई वाली बात किसी को अच्छी नहीं लगती, मुझे तो नहीं लगती लड़ाई, लड़ाई मतलब पसंद ही नहीं है हमें। अच्छा हाफिज यूनिस बाबर भाई, वालेकुम अस्सलाम। अब्बासी भाई हमारे साथ बहुत शुक्रिया। चेतन कुमार हमें सुन रहे हैं, हेलो। अरे भाई सर, मेहर इरफान सियाल साहब, आपने लिखा है प्लीज सॉन्ग इरशाद महमूद का, ये जो गाना आपने बोला है ना बिल्कुल लगाते, लेकिन यहाँ पर टाइम जो ना मेरे पास दो मिनट जाके बचे हैं, तो मास्टर करते हैं ये गाना आपको मैं सुना दूंगी, पक्का पक्का मुझे याद रह जाएगा। तो बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। डेडिकेट बाबू भाई पीर जो गोट, ओके जी बाबू भाई को डेडिकेट कर देंगे। मोहम्मद सलमान कहते हैं हमारे नेटवर्क उड़ गया और शो मिस हो गया। अरे भाई ये तो बहुत बुरा हो गया, चलिए आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, कोई मसला नहीं। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं, मुझे लाजमी बताया करें। दर्दे दिल कहती है कि तुम मेरी जिंदगी का वो खूबसूरत रंग हो जिसने मेरे हर लम्हे को यादगार बना दिया है। तुम्हारी बातों में ऐसी मिठास है जो दिल को छू जाती है और अपना बना देती है, और तुम्हारी मौजूदगी मेरी हर थकन को राहत में बदल देती है। जब भी दिन के मशहूर तर लम्हात में या जिंदगी की उलझने मुझे घेर लेती है, तो तुम्हारी याद एक नरम सी रोशनी की तरह मेरे दिल में उतर जाती है और सब कुछ आसान सा महसूस होने लगता है। मैं शायद हर बार अपने एहसासात को लफ्जों में बयान ना कर सकूं, मगर ये हकीकत है कि मेरी हर दुआ में तुम्हारा नाम शामिल होता है। ओके जी, क्या बात है स्वीटी, बहुत बेहतरीन और बहुत बढ़िया। यहाँ पर लेते हैं आप लोगों से इजाजत क्योंकि हमारे जाने का वक्त आ चुका है। कहाँ से मुलाकात जी का, मुझे थेपई हुआ थेपई जी, पंच बजे वाली प्रोग्राम में दोबारा ओके सर, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को यूज करते रहिएगा, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जितने भी लोगों ने लगाए ना सबके पॉजिटिव रिस्पांस मिलती जा रही है, तो आप भी लगाइए और इस्तेमाल करने के बाद खूबसूरतियां हासिल कीजिए। जयपाल भाई आपने शायरी लिखी है, जनाब बहते अशकों की जबान नहीं होती, लफ्जों में मोहब्बत बयां नहीं होती, मिले जो प्यार तो कदर कर लेना यारो, मोहब्बत हर किसी पर मेहरबान नहीं होती। बिल्कुल जी बिल्कुल, इसी के साथ मुकलानी ना है बाबू सिंह, सलामत सलामत अल्लाह हाफिज, बाय, लव यू ऑल एंड

मुलाकात का पोए मोहसिन नकवी से मुलाकात कई। गालन जे आखिरी मरहले में केपी हुकूमत पोएते हटी वही। घरू वजीर मोहसिन नकवी है तो केपी हुकूमत 72 कलाकन अंदर लिखत में मुआहदे अमल दरामद मनसूबो जमा कराने ते इतफाक कयो। मुआहदे जे दहशतगर्दी के खात्मे जे सूबाई जिम्मेवारी हथियारबंद फौज से सहकार वधाइण शामिल है। पुलिस एक्ट 2026 ते नजरसानी दहशतगर्दन के सूबे में कार्रवाई या महफूज ठिकाणा ठाहिण लाइ रोकण ते इतफाक कयो वियो। गुज़िरियल राति हुकूमत ऐं अपोज़िशन में ॻाल्हियूं बिना नतीजे ख़तम थियूं। ॻाल्हियुनि जो ॿियो दौर बि तय न थी सघियो। केपीअ जे वॾे वज़ीर सोहेल आफरीदी ॻाल्हियुनि जी कमेटीअ खे जारी कयल मसवदो जारी करे छॾियो। सोहेल आफरीदीअ चयो आहे त ड्राफ्ट में को बि गैर आइनी या गैर क़ानूनी मुतालबो न आहे। मुतालबो हो त वज़ीर आज़म अपोज़िशन लीडर में मुलाक़ात जो बंदोबस्तु कयो वञे। वज़ीर आज़म हुकूमती इतिहाद पी पी ऐं अपोज़िशन पार्टियुनि जे नुमाइंदनि जी हिकु गॾियल सियासी कमेटी जोड़ी वञे।

अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान खिलाफ़ ॿीहर फ़ौजी कार्रवाई जो इशारो ॾेई छॾियो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान तबाह थी चुको आहे। हाणे सुवाल इहो आहे त मामिलो सवलाईअ सां हल थींदी वेंदो या ॾुखियाईअ सां। ईरान एटमी हथियार हासिल करण वारे मनसूबे मां बेहथ खणी वियो आहे।

0: ईरान पारां पंजनि ॾींहनि में अबनै हरुंस में सत आयल टैंकर्स खे निशानो बणाइण जी दवा। ईरानी ख़बर एजेंसी मूजिब कुवैत जे ॿ ऐं अरब इमारात जे टिनि जहाज़नि खे निशानो बणायो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जी आबनै हरुंस खुलियल हुजण जी दावा बावजूद कार्रवाई जारी रहियूं। ईरान शर्तूं पूरियूं न थियण ताईं आबनै हरुंस न खोलींदो। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकिर कालिबाव चयो आहे त ईरान जो मौक़ो मुकमल तौर वाज़ आहे त अमरीका जेसी ताईं इस्लामाबाद मुफ़ाहमत यादाशनामे में तय थियल 17 ईरानी शर्तूं पूरियूं न कंदो आबनै हरुंस बंदि रहंदो। अमरीका खे समझणो पवंदो त मामले खे ड्रेक ॾियण जो वक़्तु ख़तम थी चुको आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिपचिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। अ प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी अवां जी पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वॻे खां रात 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां रात 10 वॻे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशखबरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
5: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो,
3: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 0331252576।
3: जी हा, 3135525786।
5: GFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: बुलेटिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी हाने पेंजी स्किन के दियो एक नओ गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट ए ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एश ब्यूटी क्रीम सा इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
3: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
2: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
4: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
5: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
4: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
2: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
6: सुपर वाइट।
7: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
8: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
7: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
8: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
7: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी औरतुन बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
9: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल।

0: ગઢડાલ નોતકાણી ચોક માતલી. વધિક માલુમાત લાય 2247-32-41-200T.
1: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे. डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़न जो इलाज कंदो आहे. याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे.
2: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली. वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-44-95-244.
3: मातली ऐं आस पास जी आवाम लाइ खुशखबरी. मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी. मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी. जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं. घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी. राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो. टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं. नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा. एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली. राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130-86-3163.
0: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी. छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो. सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो. मोबाइल नंबर 03002962-435. एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली.
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है.
5: सुनते रहो GFM 90.4.
6: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
0: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए,
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल.
0: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन.
6: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा.
6: 03125-25786.
0: जी हा, 2315-25-786.
6: GFM रेडियो नेटवर्क,
0: सिंध जो आवाज़.

tonight. Har din har peher, zindagi ki leher, GFM 88 network, Sindh ki awaaz. अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंकी है। GFM 88 नेटवर्क सिंकी आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते। खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
2: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-4495-244।
3: मातली आस पास की आवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9:30-6 वगे शाम ताईं। नोट, असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
8: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
5: ने कल भी परसों भी उनको हाईलाइट किया कि हमारे पास शिकायत और इन्फॉर्मेशन है कि लोकल लेवल पे जो दहशतगर्द हैं उनको उनकी पार्टी और लोकल लेवल पे उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है उस पे जिस पे उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल इसको अफोर्ड नहीं करेंगे. यहां तक भी मैसेज आया कि आप हम बिल्कुल इसको ऑफिशियली डिसओन करेंगे, लेकिन ये हकीकत है. इसी वजह से हम उनके साथ टेररिज्म से रिलेटेड एग्रीमेंट करना चाहते थे, जो एक सिंपल आप अगर वो पढ़ लेंगे वो जो 6-7 पॉइंट हैं उसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसमें कहीं सियासत आती हो. अगर आपकी दहशतगर्दी के मुतालिक सोच और जहन क्लियर है तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक मिनट भी लगाएगा उसको सोचने में, उसी वक्त साइन कर देगा. लेकिन इसका मतलब है कि आपकी सोच और आपकी जहनीत और आपके इंटरेस्ट कुछ और लोगों के साथ हैं जो दहशतगर्दी के साथ खड़े हैं, इसलिए आप वो नहीं कर रहे.
6: आपने
5: बड़ा
6: आज आपने पॉइंट बड़ा क्लियर कर दिया कि सियासत के हवाले से आपने उनको पूरी इजाजत दी है कि वो
5: देखें अगर वो इसी तरह दहशतगर्दी वाली चीजों में अच्छा, मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं कोई ये कहूं कि जी वो मुजाकरात नाकाम हो गए तो मैं उनको दहशतगर्दों के साथ लिंक कर रहा हूं. नहीं, ये बातें वो हैं जो उनके साथ हमने कल और परसों में की हैं. उसमें असद कैसर साहब ने कुछ चीजों में बहुत अच्छा जवाब भी दिया है और इसीलिए मैं असद कैसर साहब को यही कह रहा था कि हम इसके ऊपर बैठ के अगर हम सारे एग्री करते हैं तो हम इसको साइन कर लेते हैं, ताकि ना हमारी तरफ से गलत फहमी रहे ना आपकी तरफ से गलत फहमी रहे. जिस पे असद कैसर साहब ने कहा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हमें इसको साइन करना चाहिए. और उन्होंने कहा मैं सबसे पहले इस चीज को एज अ पाकिस्तानी, मुझे नहीं है कि मैं हुकूमत के साथ कर रहा हूं, हम एज अ पाकिस्तानी इस चीज को क्लियर करना चाहते हैं कि हम इसमें बहुत क्लियर हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पीछे लोग बैठे हुए हैं उनके इंटरेस्ट और बाकी सारी चीजें हैं जिसकी वजह से सारी चीजें हो रही हैं. आप आने वाले वक्त में देखते जाएं क्या होगा.
7: उसमें
5: पार्टी
7: लेवल
5: का
7: जो
5: ईरान अमरीका वाली बात. हाँ, मैं जो पहला सवाल था वो क्या था. देखें मैं हाँ एज अ गवर्नमेंट हमारा बड़ा क्लियर स्टांस था कि हम अगर उन्होंने लॉन्ग मार्च करना है हम उनको बिल्कुल रिक्वेस्ट नहीं कर रहे. उनको ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक दफा दो दफा तीन दफा कहा है कि इस तरह की चीजें नहीं होती, हम नेशनल डायलॉग के लिए हमें बैठना चाहिए. लेकिन हमारी तैयारी मुकम्मल थी, हमें लॉन्ग मार्च से कोई घबराहट या कोई प्रॉब्लम नहीं था बल्कि पूरा बंदोबस्त था. बिल्कुल फर्क था, हमारे तो उनका एग्रीमेंट हो गया था. एक थे
7: हाँ जी सियासी तौर पर मुजाकरात करने वाले तो वो थे जो आप लोगों ने उस टीम के साथ और दहशतगर्दी की मुजाकरात के लिए मेन जो मैंडेट था जिसमें आप
5: सारे हमारे लिए हमारे पास भी वही टीम थी उनके पास भी वही टीम थी. तो वो आए नहीं, वो आए नहीं. उनको जुमे को भी कहा कि आए, अगले दिन भी वो आए नहीं. अब उन तो हमें बाद में समझ आई कि उनकी इंटेंशन क्या थी. अगर मैं इंटरेस्टेड होता और मैं चीजों को रिजोल्व करना चाहता और मैं कहता कि नहीं ये तो दहशतगर्दी के पॉइंट है इन पे तो कोई मसला नहीं है तो मैं आके सॉल्व कर लेता.
7: और हुकूमत ये कह रही है कि पीटीआई के नुमाइंदों की तरफ ये जो है ड्राफ्ट चेंज किया है, क्या कोई फाइनल ऐसा ड्राफ्ट
5: मैं आपको एक चीज देखें, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के सिर्फ उस कमेटी के मेंबर से पूछ लें वो आपको सारा कुछ बता देंगे। मैं एक साइड का हूं, वो दूसरी साइड के हैं, मैं नहीं कुछ कहता, सिर्फ उनसे पूछ लें, वो जो उनको कहें पीटीए वालों को पूछे, अपने कमेटी मेंबर से पूछ लें, उसके बाद मैं कुछ नहीं कहने का। आखिरी सवाल यार, ईरान अभी पहले हमें वंस फॉर ऑल ये बंदोबस्त करने दें, फिर अगली बात करेंगे।
8: वफाकी वज़ीर
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
9: ब्रॉट टू यू बाय सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम, मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। आप प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
10: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
11: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
12: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
11: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
12: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
11: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
12: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
11: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है।
13: सुपर वाइट।
14: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी, उहा बे डी घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9:30-6:30 शाम ताईं। नोट, असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
15: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
16: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
17: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
16: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
17: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
16: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुन ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
18: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
17: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
13: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक दंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
19: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-94-294।
20: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
21: पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
22: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
21: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
22: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
21: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
22: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
21: 0331-252-5786।
22: जी हा, 2315-2575-786।
21: GFM रेडियो नेटवर्क,
22: सिंध जो आवाज़।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

धमाके मिले दर्द बहुत कभी तू भी मिल दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल आज फिर आई ना तू इंतजार रहा मुस्तकिल तवील है गम की शाम कहानी मोहब्बत की मुख्तसर नजरसानी करो जरा सी कदर करो मेरी कला की जाने वाले चले जाते हैं किस्मतें ही तो काबू में नहीं आती छाओं में धूप की तरह।

ये किया, तेरी कमी पूरी हुई ना, आज भी रही एक दिल में खला, खिजा भी आई बर्बाद और दिल का बाग भी रहा ना हरा, तेरा ही एतबार बाकी सारी दुनिया पे भरोसा नहीं बना, तू मुझ पे देखे इंसान बाकी सारी दुनिया को दिखे बस कला।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो ग़ुलाम अली रोड मातली।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छावां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
0: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
0: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 03125252786।
0: जी हा, 3135525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

0: प्रांत का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज। GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0326-36-36-879 ऐं 0312-24-01-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
1: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैन, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
3: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-44-95-244।
4: मातली ऐं आस पास जी आवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130-86-31-63।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
8: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
9: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप
3: हादसे में बिन मासूम बालन एक औरत समेत 6 जना फौत लाश है जख्मी शाहपुर जहानिया अस्पताल मुंतकिल फौतिन में बिन जणन जी कश्मीर वासी अली जान रहमतुल्लाह तो सुणप थी।

ॻाल्हियुनि जी नाकामी जो ज़िमेवार केपी जो वॾो वज़ीर आहे। अलाह न करे हिक ॿिए जान वई त सोहेल आफरीदी ज़िमेवार हूंदो। घरू वज़ीर मोहसिन नकवी जी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहसिन नकवी चयो त मुआदो तयार थी चुको हो, 99% इतफ़ाक़ बि थी वियो हो। मुआदो सदर खे ॾेखारे वापसि आयुसि त सोहेल आफरीदी मुआदो तब्दील कराए छॾियो। फैसला सोहेल आफरीदी खे करणा हुआ त पाण अची वेहे हा, जेकॾहिं ख़बर हुजे हा त मुआदो वीटो कयो वेंदो त ॻाल्हियूं ई न कयूं हा। असां दहशतगर्दी जे मामले ते ॻाल्हियूं कयूं था त हू इनकार कनि था, इस्लामाबाद ते चढ़ाई करण न ॾींदासीं।

के पी जे वॾे वज़ीर सोहेल आफरीदी ॻाल्हियुनि जी कमेटीअ खे जारी कयल मसवदो जारी करे छॾियो। सोहेल आफरीदी चयो आहे त ड्राफ्ट में को बि गैर आइनी या गैर कानूनी मुतालबो न आहे। मुतालबो हो त वज़ीर आज़म अपोज़ीशन लीडर विच में मुलाक़ात जो बंदोबस्त कयो वञे। वज़ीर आज़म हुकूमती इतिहाद पीपल्स पार्टी ऐं अपोज़ीशन पार्टियुनि जे नुमाइंदनि जी हिकु गॾियल सियासी कमेटी जोड़े वञे। पीटीआई बानी ऐं बुशरा बीबीअ खे जेल मैनुअल मूजिबि हक़ ॾिना वञनि। वज़ीर तलाल चौधरी चयो आहे त पाबंदी मरियल ज्वाइंट एक्शन कमेटी बि एहतजाज जी उहा ई तारीख़ रखी जेका पीटीआई रखी हुई। ॿिन्ही जो पैटर्न साॻियो आहे। पाड़ेसरी मुल्क प्रॉक्सीज ज़रिए पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करणु चाहे थो। हिकु गैंग पाड़ेसरी मुल्क मां हथियार पाकिस्तान आणींदी आहे। पीटीआई सां ॻाल्हियुनि में नाकामी बाबति घरू वज़ीर कुझु देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदो। M6 मोटर वे ठाहिण लाइ 30 सालनि खां आसरा ॾींदड़ वफ़ाक़ी हुकूमत पारां ईंदड़ महीने सखर हैदराबाद मोटर वे M6 ठाहिण वारो कमु शुरू करण जो ऐलान। वफ़ाक़ी वज़ीर अलीम ख़ान चयो आहे त 30 सालनि खां देर जो शिकार मोटर वे जी तामीर शुरू थियण पई वञे। M6 जहिड़ी तारीख़ी मनसूबे खे अमली शिकिल ॾियण जो मौको मिली रहियो आहे। M6 मोटर वे सिंध समेत सॼे पाकिस्तान में वापारी सरगर्मियुनि खे हथी ॾींदो। M6 मोटर वे मनसूबो सिंध ऐं पाकिस्तान जी तरक़ीअ लाइ अहम साबित थींदो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जी जाती उमरा में नवाज़ शरीफ़ सां मुलाक़ात। मुलाक़ात में मुल्क जी सियासी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं थियूं। ज़रियनि मूजिबि वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ नवाज़ शरीफ़ खे हुकूमत अपोज़ीशन जी ॻाल्हियुनि बाबति आगाही ॾिनी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ बि मुलाक़ात में मौजूद। ख़ानदानी मुलाक़ात खां पोइ घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी बि वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ संदसि घर में मुलाक़ात कई। मोहसिन नक़वी वज़ीर आज़म सां पीटीआई जे एहतजाज ऐं सियासी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं कयूं। वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ सां मुलाक़ात खां पोइ मोहसिन नक़वी सां मुलाक़ात कई।

केपी में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई, अठ खारजी दहशतगर्द मारजी वाया। डीआई खान में दहशतगर्दन की मौजूदगी की गुजे इतलाते ऑपरेशन कयो वियो। सिक्योरिटी फोर्सेज मूजिब ऑपरेशन में मारजी वेल फितने खारजन जा टे कमांडर भी शामिल आहिन। मारजी वेल दहशतगर्दन वटां वॾे अंग में हथियार परडे॒ही करंसी बि हथाई आहे।

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वॻे खां रात 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां रात 10 वॻे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आस पास जी अवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 0313086316।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
5: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
3: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक अड़ो FM रेडियो आए,
5: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
3: हाँ, गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
5: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 0331-2525-786।
3: जी हाँ, 3135-5576।
5: GFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

देता है। तो ये बिल्कुल आप लोग मुझे सुन रहे हैं, इस सफर सफर से लाइव आप लोग मुझे सुन रहे हैं और जियो सिमिटेट के पेज पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ वहाँ हमारा जो शो है वो लाइव चल रहा है।

तो ये जनाब आप लोग मुझे सुन रहे हैं इस वक्त GFM88 सक्कर से लाइव, और आप लोग मुझे एफबी पेज पे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे GFM88 सक्कर के, वहां से आप मुझे लाइव सुन रहे हैं ठीक है ना, वहां भी ज्वाइन कर लें। अगर आप रेडियो पे नहीं आ रहे, FM पे नहीं आ रहे, तो फिर यहां आके लाइव सुन लें और शामिल होकर मुझे जरूर बताएं कि आप लोग इसको मुझे कहां से सुन रहे हैं। और खास ख्याल रखें कि आप लोग मुझे अपनी सिटी का नाम जरूर लिख कर दिया करें, शहर का नाम, अपने गांव का नाम, जहां से आप सुन रहे हैं, घर का एड्रेस मुझे बताने को कह, लेकिन आप शहर का नाम जरूर मेंशन किया करें, अपना नाम भी सही से आप लोग मेंशन किया करें। अच्छा जी जनाब, तो बातें तो होती रहती हैं, लेकिन बातों के बगैर हमारा तो जो शो है ये तो अधूरा है ना। तो जी मेरे प्यारे प्यारे जमीन, बातें ही हमारे शो का हिस्सा हैं, और इसके बगैर हमारा शो अधूरा है, और शो अधूरा है, बातें आप लोगों के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। जब तक आप लोग नहीं होंगे तो हमारा शो की रौनक कैसे बढ़ेगी? मेरे शो की रौनक तो आप लोग हो ना, आप लोगों के लिए मैं ये शो लेकर आई हूँ। और साथ साथ एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप लोग शेयरिंग कर दिया करें थोड़ी बहुत, इससे कुछ नहीं जाता ठीक है। अच्छा तो जी आज का दिन, सबको पता है कि आज का दिन बड़ा अच्छा है, छुट्टी का दिन है, यानी इतवार का दिन है, लेकिन मेरे लिए इतवार नहीं है, मैं आप लोगों के लिए आई हूँ, तो आप लोग भी आ जाए मेरे लिए। तो जी मौसम तब्दील हो चुका है, और आज तो हवाएं बड़ी प्यारी प्यारी चल रही हैं, तो नरम नरम सी शाम, ठंडी ठंडी सी शाम है, ठंडी और गर्म सी शाम है। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना इसमें अलग सा टॉपिक रखा है, आज मैंने थोड़ा टॉपिक चेंज रखा है, तो प्लीज मुझे इसको जरूर आप लोग मुझे बताइएगा, मेरे साथ रहकर बताएं कि आप लोग का नजरिया क्या है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। जैसे मेरी सोच अलग है तो आपकी सोच क्या है? जी बिल्कुल, आवाज के रिश्ते में जहाँ आवाज होती है वहाँ हमारा एक ताल्लुक बन जाता है हर किसी के साथ। ये भी अल्लाह पाक की एक नेमत है जो इसने हमें दी हुई है। तो जी इसी तरीके एक शो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, आवाज का रिश्ता है, यहाँ आप मेरे साथ जुड़ जाते हैं, बातें होती हैं आपके, आप लोगों को अपने ख्याल के इजहार का मौका दिया जाता है, उसकी आवाज में बनती अल्फाज आपके होते हैं, आवाज मेरी होती है। तो जी बिल्कुल जनाब, तो आज थोड़ा सा मैं टॉपिक ऐसे लेकर आई हूँ कि हम लोगों ने बात करते हैं। अच्छा मैं आप लोगों से पहले तो कोई ना कोई मैं आप लोगों के सवाल से कोई नज़्म पोएट्री या कोई जो है कैप्शन होता है पढ़ के जरूर मैं चीज बताती हूँ आप लोगों को, कि आप लोगों को भी नॉलेज हो और मुझे पता चले आप लोगों के जरिए इसके अंदर और क्या है कि चेंजिंग है। तो जी आज हमारे टॉपिक के खुशियाँ, आप लोगों की नज़र में खुशियाँ क्या है? एक होता है खुशियां, हम लोग अक्सर यही समझते हैं कि जैसे कोई, मतलब अगर बच्चे के हवाले से देखें तो छोटा बच्चा उसको उसकी पसंद की चीज मिल जाए, कोई बड़ा है तो उसको उसकी पसंद की चीज मिल जाए, या अच्छे मार्क्स आए पूरी फैमिली खुश होती, कोई कामयाब हो बिजनेस में जो उसकी पसंद की किसी को जॉब मिल जाए, अदरवाइज कोई भी सी बड़ी बात, तो हम इसे शायद खुशी समझते हैं। लेकिन अक्सर हमने कभी सोचा कि हमें खुशियों, बड़ी बड़ी खुशियों में छोटी छोटी खुशियां भी शामिल होती हैं। ये छोटी छोटी जो खुशियां होती है ना, ये बहुत बड़ा समुद्र बन जाती है, कभी कभी हमें खुश रहने के जरिए छोटी खुशियां ही होती हैं। तो जी अक्सर हम बड़ी बड़ी खुशियों के इंतजार में रहते हैं, सोचते हैं कि जब बड़ा घर होगा तब खुश होंगे, जब बड़ी नौकरी मिलेगी, जब कोई अच्छी नौकरी मिलेगी तब खुश होंगे, पर बस सोच तो ये है जनाब कि जिंदगी बड़ी खुशियों से नहीं, जिंदगी बड़ी खुशियों से नहीं, छोटी छोटी खुशियों से भी बनती है। आप देखें ना, जिसके पास बड़ा घर नहीं है खुश तो वो भी है, जिसके पास कार नहीं है, बाइक नहीं है, तो वो भी तो खुश है ना, हर कोई खुश है अपनी जिंदगी में, लेकिन ये खुशियां हमने खुद चुननी है।

यही छोटी छोटी खुशियां होती हैं जो कतरा कतरा बनकर हमारी जिंदगी को समंदर बना देती हैं, खुशियों का समंदर बना देती हैं। पानी वाला नहीं क्या आप भेजा, खुशियों का समंदर जिसमें आपने ना बहना है ना बहकना है। तो मेरे साथ जरूर आप लोग शेयर करें कि आप इस नजरिए को कैसे देखते हैं, आपकी नजर में छोटी छोटी खुशियां कौन सी हैं। तो जी प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन एक अच्छा सा ट्रैक मैं शामिल कर रही हूँ राहत फतेह अली खान की आवाज में आप लोगों के लिए, अपने तमाम लिसनर्स के लिए मैं प्रोग्राम में शामिल कर चुकी हूँ राहत फतेह अली खान और मोमिना की खूबसूरत आवाज में आफरीन आफरीन। तो मेरे साथ उम्मीद करती हूँ आप लोग भी इसको एंजॉय करेंगे। आवाज के रिश्ते में एक पहला फर्स्ट ट्रैक अपने तमाम

का है, समझ सका होंगे जब मैं टाइम का जिक्र करती हूँ कि भाई अब ब्रेक का टाइम होने वाला है। तो जी बिल्कुल इस वक्त टाइम हो चुका है 5:30 PM और अभी चलते हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक में आवाज के रिश्ते में, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ ये आवाज का रिश्ता दोबारा से जो है जोड़ लूंगी, ठीक है। तो बस अब शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद हम वापिस आते हैं।

0: It's 5.
1: सिंध के माथे का झूमर
0: GFM ATH Network
2: सिंध की आवाज।
3: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरनि जूं छिटूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻरायो।

0: जी जाली ब्लॉक सस्ते में सस्ती छित लगाए लाए राबतो कंदा खुदा बख्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
1: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
0: तो पोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एड़ो एफएम रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
0: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीए एफएम मातली बदीन
1: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार हलाण लाए
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा
1: 03132525786
0: जी हाँ बुड़ी 231 5 5 786
1: जीए एफएम रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

प्रोग्राम कहाँ से सुन रहे हैं, कहाँ तक मेरी आवाज़ आप देखिए समाचार से आ रही है। माइकिस टांगे के घर गली मोहल्ला, अच्छा घर किस मोहल्ल सिटी किस शहर मोहल्ला और गली कूचों कोनों में जो मेरी आवाज जा रही है तो जरूर बताइएगा आपकी समातों से टकरा रही है। तो जी इस वक्त कोई घर पर होगा, कोई लेटा होगा, कोई बैठा होगा, कोई घूमने गया होगा, कोई आउटिंग पर दोस्तों से, कोई लॉन्ग ड्राइव पर सुन रहे होंगे, कोई रिक्शा में बैठा होगा, कोई गाड़ी में होगा, कोई सफर कर रहा होगा, हर कोई अपनी मंजिल की तरफ रवाना दवा अपने कामों में मगन, लेकिन हमारे साथ जरूर होंगे ये तो मुझे पता है। हाँ अगर वो मैसेज नहीं कर पा रहे या शामिल नहीं हो पा रहे तो जी बिल्कुल आप ऐसा करें, आप मुझे पेज पर ज्वाइन करें, वहाँ पे कमेंट करके शामिल हो सकते हैं या आप हमें TIPL81 पर मैसेज कर सकते हैं। वो बहुत आसान तरीका, TIPL81 पर आपने मैसेज करने के लिए सिर्फ SKR लिखना है एंड अपना जो मैसेज वो टाइप करना है आपने सेंड कर देना है 8888888821 पर, मतलब कि तीन दफा आपने 8 प्रेस करके वन टाइम आपने वन ही प्रेस करना है और फिर सेंड कर देना है हमें, ठीक है ना। SKR लाजमी लिखा कर ताकि मुझे पता चले आप लोग किस शो पर हैं, या मेरे शो का नाम लिखकर या आरजे कॉमन जरूर लिखा करें क्योंकि फिर मुझे पता चलेगा भाई मेरे लिस्टर मुझे सुन रहे हैं, ठीक है। शो का नाम लाजमी शो किया करें आप लोग। अच्छा जी तो आगे बढ़ रहे हैं और हम बात कर रहे थे छोटी छोटी सी खुशियों पर, भाई खुश रहना चाहिए, वैसे भी खुश रहने से हंसने मुस्कान से खून बढ़ता है, तो किस किस का खून बढ़ा बता दें तो जी बिल्कुल मेरे लिए भी सब ये कहते हैं खून बढ़ता है, लेकिन मेरा खून नहीं बढ़ा अभी तक, मेरा खून कम होता जा रहा है, चलता जा रहा है ना, खत्म होता जा रहा है। चलिए जी ओके। अच्छा जी मैं इतना खुश रहती हूँ बस, फिर भी बस क्या करें। खैर चलें हम आगे बढ़ते हैं, छोटी छोटी खुशियां। एक बात है कि मैं अपने हर दिन हर टाइम हर वक्त एंजॉय करती हूँ, जैसा भी लम्बा टाइम है ना खुशी का है तो उसको खुलकर खुश होकर एंजॉय जरूर करना है, और वैसे ही एंजॉय करती हूँ जिनको यादगार बनाने की कोशिश करती हूँ। तो मेरी तरह आप लोग भी रहा करें हंसते मुस्कुराते। अच्छा जी तो हम बात कर रहे हैं छोटी छोटी खुशियां, तो जिन्हें हम बड़ी खुशियों के इंतजार में भूल जाते हैं उन्हें नहीं नजरअंदाज करना चाहिए। ये छोटी खुशियां तो हैं जो हमें बड़ी खुशियों का मौका देती हैं। तो जी हम बात कर रहे थे कि अक्सर हम सोचते हैं जब कोई बड़ी कामयाबी मिलेगी, जब कोई खुशी पूरी होगी, जब कोई खास दिन आएगा तब होंगे, लेकिन जिंदगी में खुशी सिर्फ बड़ी कामयाबियों का नाम तो नहीं। मुझे बताएं कि बड़ी कामयाबियों का नाम है जिंदगी आप लोगों की, नहीं खुशियां जो है बड़ी कामयाबी की तो मोहताज नहीं है, वो तो किसी टाइम भी हो सकती है ना। तो अपने हर पल को जिए। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ कि अच्छा जैसे आज कभी इतवार है तो कभी कोई एक दिन खास इतवार का दिन एक पुरसकून शाम भी खुशी का दिन होता है, खासकर ऑफिस और स्कूल वालों के लिए जब ऐलान हो जाए कि छुट्टी है तो उस दिन कितनी खुशी होती है, वो तो छोटी सी खुशी लेकिन खुशी होती है ना। कभी मौसम हल्का सा ठंडा और नरम होना भी खुशी है, कभी पसंदीदा गाना अचानक सुनाई दे जाए तो वो भी खुशी है, कभी किसी अपने का बगैर किसी मतलब के फोन आ जाना भी तो एक खुशी है, कभी चाय का गर्म कप और खिड़की से आती ठंडी हवा एक खुशी का लम्हा है ये भी, कभी किसी का ये कहना कि आप कैसे हो ये तो इंतहाई खुशी की बात होती है, कोई हमसे बिना वजह पूछ ले, कोई हमसे हमारा हाल पूछ ले, हम यही चाहते हैं और उस लम्हे हम खुश हो जाते हैं, कभी बहुत दिन बाद किसी दोस्त से बात हो जाना, कभी किसी पुरानी तस्वीर को देखकर मुस्कुरा देना, और कभी बस इस एहसास के साथ कि आज दिल पुरसकून है। तो जी बिल्कुल यही छोटी छोटी खुशियां हैं, उससे ज्यादा भी होती शायद मैं नहीं क्यों है आप लोगों के साथ शेयर कर सकती या फिर मेरे जहन में नहीं है, लेकिन आप लोग के जहन में हो तो आप लोग जरूर मेरे साथ शेयर करें कि आपके नजर में छोटी खुशी कहाँ पर है, कौन सी है, क्या कभी आपने छोटी छोटी खुशियों को वाकई महसूस किया है या हमेशा इंतजार किया किसी बड़ी खुशी का जिसके लिए आपने अपनी मौजूदा खुशियों को नजरअंदाज कर दिया। आप कल के अच्छे वक्त के लिए अपने आज के वक्त को नजरअंदाज करें, खुश नहीं हो पा रहे तो ये अपने साथ ज्यादती है। अब आप मुझे ये बताएं कि आपकी जिंदगी में वो छोटी सी खुशी क्या है
جس کے لیے آپ کو کسی خاص موقع یا بڑی کامیابی کی ضرورت نہیں پڑتی. پھر جب تک آپ مجھے کمنٹس کر کے بتاتے ہیں، میسج کر کے بتاتے ہیں، تو ہم لوگ جو ہیں آگے چلتے ہیں اور ایک اچھا سا سانگ پلے کر رہے ہیں. کل ہمارے لسنرز نے فرمائش کی تھی، مجھے یاد ہے ایک فرمائش تھی عربی سانگ کی اور تھی ایک ان کی منور مولائی کے سانگ کی. تو جی کل ٹائم نہیں تھا، کل ٹائم نہیں تھا، لیکن جو ہے آج بھی پلے کروں گی. تو جی بالکل آپ لوگ تب تک انجوائے کریں ایک سندھی سانگ منور مولائی کا، جو ہے میں نے پلے کر دیا ہے آواز کے.

अभी यहाँ पर आप लोग इंजॉय कर रहे थे, अभी एक अभी सॉन्ग मैंने प्ले किया था तमल्लीमा, तो जी बहुत अच्छा था, मुझे अच्छा लगा था ये सॉन्ग, तो इतने मतलब मैंने सिलेक्ट किया जिनमें से मुझे इसकी टोन, इसकी सिंगिंग मतलब अच्छा अंदाज लगा, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं यही जो हमारे लिसनर्स थे एनजेफ की फरमाइश है, मैं ये वाला अरबिक सॉन्ग जो प्ले कर दूं। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग फरमाइश करते हैं कि भाई ये सॉन्ग प्ले कर दें, ये कर दें, तो इसी तरीके से आप लोग वो टॉपिक्स जिन पर आप लोग बात करना चाहते हैं मेरे साथ लाजमी शेयर किया करें, ताकि वो भी मैं प्रोग्राम में शामिल करती रहूं। तो जी बिल्कुल इस वक्त टाइम भी हो चुका है 5:56 और हम लोग बात कर रहे थे छोटी छोटी खुशियों के ऊपर कि आपकी नजर में क्या है, मतलब कि आपकी जिंदगी की वो छोटी सी खुशी क्या है, वो ऐसी क्या बात है जिससे जो आपको लगता है कि ये कोई खास मौका या बड़ी कामयाबी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको लाइफ में छोटी खुशियों के लिए अपनी। अच्छा जी, जिसे हम छोटी मोटी मिसाल अगर मैं अपनी तरफ से, तो मैं जाहिर सी बात है आप लोगों को यही बताऊंगी कि किसी के लिए सुबह की पहली चाय खुशी होती है भाई, किसी को होती है कि मैं सुबह से उठ के चाय पीनी है, जो टी लवर्स होते हैं उनको कहीं पे भी आप चाय देते हैं वो पी लेंगे, आप उनको वो ये नहीं देखेंगे गर्मी सर्दी, उनको बस चाय की तलब है, वो टी लवर्स हैं वो तो पियेंगे। अब मेरी तरह कोई शौकीन होगा ना आइसक्रीम का, तो वो सर्दी में भी आइसक्रीम खाएगा, चॉकलेट्स खाएगा, जैसे मैं हूँ मैं मान जाती हूँ। इसी तरीके से किसी के लिए माँ की आवाज़, माँ बाप की आवाज़ होती है, घर का प्यार होता है, किसी के लिए बच्चों की हंसी होती है, और किसी के लिए दोस्त का मैसेज होता है, किसी के लिए तन्हाई में पसंदीदा कोई गाना या सिंगिंग सुनना होता है, किसी को पसंद होता है, और किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। तो आपके लिए वो खुशी छोटी सी क्या, इनमें से क्या हो सकती है जो आपका पूरा दिन अच्छा कर देती है, आपका टाइम अच्छा कर देती है। तो जी बिल्कुल अभी जो है टाइम हो चुका है, मतलब कि अब हम इसके बाद पहले मुझे टाइम लेना है आप लोगों से, फिर आप लोग बोलेंगे कोमल ब्रेक लेती है, कोमल जो है प्रोग्राम में बातें कम करती है, बातें मैं बहुत करती हूँ, बस ये है कि हमें ये ब्रेक भी लाजमी लेना है, इसमें भी तो आप लोगों के फायदे की बातें हम बताते हैं। तो जी जाने जो मैं एक और अच्छा सा सवाल आप लोगों से करना चाहूंगी इसी मौजू पर, इसी के ऊपर हम बात करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक ही छोटी छोटी खुशियां हैं। तो जब ब्रेक की बात आती है ना, तो मुझे भी खुशी होती है कि चलो ब्रेक का टाइम तो आ रहा है ना, वो तो लेना है ना। तो जी बिल्कुल इस वक्त के अच्छा मैं आप लोगों से वो सवाल एक और सवाल मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ कि क्या खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए बड़ी वजह जरूरी है। वही सवाल जो मैं आप लोगों से बार बार करती हूँ, मैं उसे अलग अलग तरीके से कर रही हूँ, लेकिन शायद आप लोगों को समझ नहीं आया, तो मैंने कहा कुछ और तरीके से भी आप लोगों के साथ कर दूं कि मतलब खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए कोई बड़ी वजह, बड़ी ही कोई बात तो जरूरी नहीं है ना भाई, छोटी छोटी वजह कर सकते हैं ना। कभी कभी गेट टूगेदर दोस्त कर लेते हैं, मूड बन जाता है, चले जाते हैं, जैसे जब मैं जब हम अपने मतलब के कॉलेज में थे, तो जब हमारी छुट्टियां होती थी कि मतलब समर वेकेशन है या विंटर वेकेशन है, तो हम लोग कॉलेज में मिलके गेट टुगेदर करते थे, एंजॉय करते थे, वो टाइम हमारा बड़ा अच्छा गुजरा था। यकीन आप में से भी किसी का ऐसा ही वक्त गुजरा होगा। तो छोटी छोटी छोटी खुशियों के लिए मतलब कि आप सिर्फ बड़ी वजह को अपनी लाइफ में अहमियत देते हैं खुश होने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, या आप छोटी छोटी बातों को भी अहमियत देते हैं जो खुशी का बायस होती हैं। तो एक तरह अच्छा एक मजे की बात, कि कहीं पर किसी की लड़ाई हो, कुछ हमारी अपना मैं बताऊं कि लॉजिक है लोगों की, कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं पर कोई फाइट हो रही है, तो वो खुश हो रहे हैं कि लड़ाइयाँ हो रही हैं, हमारा काम हो रहा है। अच्छा जी, तो टाइम हो गया है न्यूज़ ब्रेक का, इसके बाद आप लोगों के साथ कंटिन्यू करूंगी प्रोग्राम को, और कमर्शियल ब्रेक भी साथ में होगा।

M6 मोटरवे ठाहिण लाइ 30 सालनि खां आसरा ॾींदड़ वफ़ाक़ी हुकूमत पारां ईंदड़ महीने सखर हैदराबाद मोटरवे M6 ठाहिण वारो कमु शुरू करण जो ऐलान। वफ़ाक़ी वज़ीर अलीम ख़ान चयो त 30 सालनि खां देर जो शिकार मोटरवे जी तामीर शुरू थियण पई वञे। M6 जहिड़ी तारीख़ी मनसूबे खे अमली शिकिल ॾियण जो मौको मिली रहियो आहे। M6 मोटरवे सिंध समेत सॼी पाकिस्तान में वापारी सरगर्मियुनि खे हथी ॾींदो। M6 मोटरवे मनसूबो सिंध ऐं पाकिस्तान जी तरक़ीअ लाइ अहम साबित थींदो। केपीअ में सिक्योरिटी फोर्सिस जी कार्रवाई, 8 ख़ारजी दहशतगर्द मारिजी विया। DI खान में दहशतगर्दनि जी मौजूदगी जी गुझे इतला ते ऑपरेशन कयो वियो। सिक्योरिटी फोर्सिस मूजिब ऑपरेशन में मारिजी वियल फितने ख़ारजनि जा 3 कमांडर बि शामिल आहिनि। मारिजी वियल दहशतगर्दनि वटां वॾे अंग में हथियार ऐं परडेही करंसी हथाई आहे।

0: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है।
1: तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की?
0: ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है, क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
2: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ, जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
3: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है, इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
2: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम, जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
0: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट, लेकिन चॉइस सबकी है
4: सुपर वाइट।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी, औरतों ने बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: याद रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए 2347-3241-230।
8: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन, औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
9: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
5: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशखबरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
10: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM
7: 90.4। पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
6: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
7: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
6: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन
7: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
7: 03125257 86
6: जी हा 2315525786
7: GFM रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।

अगले लिसनर से आवाज के रिश्ते में एक बार फिर से आप लोगों को सबको वेलकम करती हूँ। और ये रिश्ता दोबारा से जुड़ चुका है आप लोगों आवाज का, तो जी बिल्कुल जहाँ आवाज वहाँ रिश्ता, तो ये खूबसूरत सा एहसास का इजहार ख्याल का ये रिश्ता जो आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, अल्फाज आपकी आवाज मेरी। अच्छा जी, तो अब मैं बात करती हूँ आप लोगों से, आगे की तरफ हम चलते हैं कि अब हमारे पास टाइम शॉर्ट रह गया है, बहुत कम से कम होता जा रहा है। ये दो घंटे कैसे गुजरते हैं आप लोगों के साथ के पता ही नहीं चलता। कैसे ही आप लोगों के साथ टाइम गुजरता है और पता भी नहीं चलता बिल्कुल भी। तो जी 5 बजे स्टार्ट होकर 7 बजने में कुछ ही मिनट जा रहे हैं, तो जो खत्म हो जाएगा फिर आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी सैटरडे एंड संडे। तो जी हमारे एक लिसनर ने कल पूछा था कि आप डेली प्रोग्राम करती, तो जी भाई मैं डेली प्रोग्राम नहीं करती, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा कौन थे, लेकिन उनका सिर्फ लास्ट में कमेंट कर चुकी थी और मैं शो क्लोज कर चुकी थी अपना, इस वजह से तो मैं रिप्लाई नहीं दे सकी थी। जस्ट जो ना सैटरडे एंड संडे को ये शो आता है आवाज का रिश्ता, और शाम 5 से 7 बजे तक सैटरडे एंड संडे पर। इंशाल्लाह कोशिश है कि आगे चल के अगर टाइम मैनेज हुआ तो मैं वीकली आप लोगों के साथ ये शो, फिर मतलब फुल वीक जो ये शो रख लिया करूंगी वीकली की जगह। ओके जी, तो अभी एक अच्छा सा ट्रैक प्ले करती हूँ आबदा परवीन की खूबसूरत सी आवाज में, यार को हमने जहाँ बचा देखा, शहरज़ाद ड्रामे का ये ट्रैक है। मेरे साथ आप लोग भी इंजॉय करेंगे, उम्मीद है कि आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे शो को।

0: तेरे हाथ में कुछ नहीं है।
1: और को हमने जा बजा
2: देखा। अजीब अजीब तरह के रिश्ते आने लगे हुए, तो सब सोच के परेशान होती हूँ कि मन का क्या होगा।
0: एक दिन ऐसा भी आया जब तुम मुझसे पागलों वाली मोहब्बत करो।
1: कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाजिब।
3: दिन में चमगादड़ देखा है तुमने कभी?
1: कहीं मुमकिन
3: बिल्कुल वैसा हो जाता अगर उसका चेहरा न देखो तो।

0: इसकी शक्ल सलमान से नहीं होती। प्लीज मैं इन बुतों को पूछ थोड़ी रही हूँ।
1: पहले पहले अपने हाथ से बनाए हुए बुत से प्यार हो जाता, फिर अपने आप से इश्क हो जाता, फिर अपने आप को आदमी

अगर मोहब्बत ये है कि आप उस इंसान को अपने जहन से बाहर ना निकाल सके, उसके बारे में दिन और रात सोचते रहे, उससे बात करने के बाद यू होल्ड ऑन टू एवरी सिंगल वर्ड, यू आर ऑब्सेस्ड, तो हाँ मुझे है मोहब्बत।

0: कोई इश्क मानता है, कोई मोहब्बत मानता है, और जो ये सब कुछ नहीं मानता वो ख्वाहिश का खत्म होना मानता है।
1: कहीं आशिक नियाज
2: मैं बहुत डिफरेंट इंसान हूँ, मेरे साथ रहना आसान नहीं।
1: कहीं आशिक नियाज की सूरत
3: मुझे आसानियाँ पसंद नहीं।
1: सीना बिरिया दिल जगा देखा,
3: महंगे कपड़े पहन चीथड़ों में फिरने वाले लोग हमें जानवर नजर आते हैं।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: अरे न खुश और बीरोनो की स्किन हर इन्हीं जलाए छा डैमेज ए डल स्किन के कयो आउट पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम जह में आहिन चार रंग जी खूबियों ए कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे ए चामर जी खूबियों जिल्द में फाइन लाइंस ए झुरन के घट कन ए रिंकल्स के घट करे सिर्फ टिन बीहन में जिल्द के बढ़ाए नरम मुलायम ए ब्राइट उन गरुगत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैन जी हर कतरे सा चेहरे के मिले खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
2: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा दायमी बुखार नज़लो जुकाम बदन में सूर चेनी कमजोरी मलेरिया मुद्दे जो बुखार टीबी बदहजमी मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
3: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली वधीक राब्ते लाए सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
4: मातली आस पास की आवाम लाए खुशखबरी मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट असां वटि लूज़ गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 0313086316 3।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
7: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हीअ में सूर चेल में सूर रत जो घट

0: थियण, कमजोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-200।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।
1: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
5: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
1: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 0331-252-5786।
5: जी हा 2311-5525-786।
1: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियणु, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियणु, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

पीटीआई जे सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा चयो आहे त ॻाल्हियुनि जी नाकामी जो सबबु हुकूमती इसरार आहे। हुकूमत मुशावरत ऐं तफ़ाक़ जो रस्तो अख़्तियार करण लाइ तयार न हुई। हुकूमती टीम मुलाक़ातुनि जी बहाली खां सवाइ ॿियो कुझु बि ॾियण लाइ तयार नाहे। केपी हुकूमत खे वफ़ाक़ी सरकार जी क़दमनि ऑपरेशन जी हिमायत लाइ मजबूर कयो वियो। पीटीआई जो मौक़िफ़ु त दहशतगर्दी ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस हुजे। ॻाल्हियुनि वारी कमेटीअ जो मक़सदु पीटीआई बानीअ ताईं फौरी रसाई हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी मुलाक़ात। घरू वज़ीर पारां पीटीआई सां ॻाल्हियुनि जे हवाले सां ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनाउल्लाह बि वज़ीर आज़म सां फोन ते राब्तो करे ॻाल्हियुनि में 1.5 लाख खां आगाह कयो। मोहसिन नक़वी सदर आसिफ़ ज़रदारी सां बि फोन ते राब्तो करे अहम मामलनि ते ब्रीफिंग ॾिनी। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी पिशावर पहुची गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी सां बि मुलाक़ात कई। पीटीआई जे लांग मार्च दौरान नमूनमान जी सूरतहाल बरक़रार रखण जे हवाले सां गौर वीचार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी जाती इमरा में नवाज शरीफ सां मुलाक़ात। मुलाक़ात में मुल्क जी सियासी सूरतहाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठ। ज़रियुनि मूजिबि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नवाज शरीफ खे हुकूमत अपोज़ीशन जे ॻाल्हियुनि बाबति आगाही ॾिनी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ बि मुलाक़ात में मौजूदु हुई। M6 मोटर वे ठाहिण लाइ 30 सालनि खां आसरा ॾींदड़ वफ़ाक़ी हुकूमत पारां ईंदड़ महीने सखर हैदराबाद मोटर वे M6 ठाहिण वारो कम शुरू करण जो ऐलान। वफ़ाक़ी वज़ीर अलीम ख़ान चयो आहे त 30 सालनि खां देर जो शिकार मोटर वे जी तामीर शुरू थियण पई वञे। M6 जहिड़ी तारीख़ी मनसूबे खे अमली शिकिल ॾियण जो मौको मिले पियो। M6 मोटर वे सिंध समेत सॼे पाकिस्तान में वापारी सरगर्मियुनि खे हथी ॾींदो। M6 मोटर वे मनसूबो सिंध ऐं पाकिस्तान जी तरक़ीअ लाइ अहम साबित थींदो।

se vi a fare, so che...

0: दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए आर्च ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो

0: कहिड़ी स्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे ऐं चांवरनि जूं खूबियूं जिंद मां फाइन लाइन्स ऐं झुरियुनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ 3 ॾींहनि में जिंद खे बणाए नरम मुलायम ऐं ब्राइट उन सां गॾो गॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जंहिंजी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट रॉयस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई और औरतुन बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी, आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए 2347-3141-230।
5: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
6: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधिक राब्ते लाए सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली आस पास की आवाम लाए खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम।

0: रोड मातली।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
0: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
0: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
0: जी हाँ, 2315525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

0: उसमें उन्होंने भी कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, आई मीन कि अब वो मुसाहलियत की तरफ है। और मैं ये बात भी एक करना चाहता हूँ सुल्तान और एफएस की मौजूदगी में कि मेरा ख्याल इन फॉर्मर क्रिकेटर्स को भी कहीं न कहीं ख्याल करना चाहिए, और खासतौर पर जब आप खेल छोड़ चुके हैं तो फिर एक दूसरे की जो रिस्पेक्ट है मैं समझता हूँ वो कायम रहनी चाहिए, एक दूसरे पे इस तरह की बेजा तनकीद नहीं करनी चाहिए, और इस बात को समझना चाहिए कि कहीं न कहीं वो जब लाइकिंग डिसलाइकिंग जरूर होती है। मिसाल के तौर पे अगर आज मैं चीफ सिलेक्टर हूँ तो हो सकता है मुझे किसी खिलाड़ी में ऐसा टैलेंट नजर आए जो कल आने वाले चीफ सिलेक्टर को ना नजर आए, या मुझसे जो पहले चीफ सिलेक्टर था उसे ना नजर आया, उसने किसी और एंगल से देखा हो। मगर जैसे मिसाल के तौर पे मैं इस अपनी बात करूं तो मैं हसन नवाज को शायद टेस्ट मैच खिलाऊं, हालांकि कोई सिलेक्टर मुझसे एग्री नहीं करेगा। मैं भाई आपके जो थे वो रजाउल्लाह, इन जैसे दो तीन हिटर ऊपर होते वो छक्के मारते शायद हमें एक टेस्ट मैच ही जीत जाते, तो सिर्फ ब्लॉकिंग ही मतलब थोड़े, जब आप ब्लॉक कर ही नहीं पा रहे तो शॉट्स ही मार लो। तो ये सारी चीजें आप डिफरेंट तरीके से सीखा देखते हैं लोग चीजों को। अगर न्यूजीलैंड कभी टेस्ट मैच में ब्रेंडन मैकलम से ओपनिंग न करवाता, अगर हमारे हमारी मेंटेलिटी होती और ब्रेंडन मैकलम ने दुबई में जो है वो टेस्ट मैच जितवाया डबल सेंचुरी करके पाकिस्तान के खिलाफ, और इंडिया के खिलाफ 225 रन बनाए टेस्ट मैच में इंडिया में, और फिर 54 गेंदों पर उन्होंने टेस्ट की सेंचुरी मारी, मिसबार वेव रिचर्ड्स को उन्होंने कहा बाय बाय, तो बात ये वो टेस्ट मैच ही था ना भाई साहब। तो खाली ये बातें करना कि नहीं जी ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि हमें लेके जाती हैं। तो हर बंदे की एक सोच अलग होती है, हर बंदे की सिलेक्शन अलग होती है, हर बंदे का पसंदीदा क्रिकेटर गुलूकार या एक्टर अलग हो सकता है, लेकिन असल में देखना चाहिए कि प्राइड एरिया क्या है। तो इसको अगर आप देख के चलेंगे तो मेरा ख्याल आपको तकलीफ नहीं होगी और आप बेजा तनकीद से बचेंगे। बहरहाल कुकली हम मूव करते हैं सुल्तान, अब श्रीलंका की टीम आ रही है, श्रीलंका भी कोई बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा, वो इंग्लैंड से श्रीलंका में भी पिछले दिनों हारा और अब इंग्लैंड गए थे वहां भी हारे हैं, T20 में भी वनडे में, उससे पहले टेस्ट मैच भी कोई इतने से नहीं खेल रहे थे, हम तो तीनों टेस्ट मैच वहां हार गए, वेस्ट इंडीज से एक टेस्ट मैच हम जीत गए थे, और जो लास्ट पाकिस्तान और श्रीलंका की वजह से वहां भी श्रीलंका हमसे अच्छा खेला था वो जीत गया है। लेकिन अब बहरहाल पाकिस्तान की होम कंडीशन है और साथ साथ श्रीलंका तो फिर एशियाई की टीम है, इंग्लैंड को वनडे में ज्वाइन करना एक ट्रायंगुलर इवेंट होगा, तो ये जो ट्रायंगुलर सीरीज होगी उससे पहले पाकिस्तान और श्रीलंका की जो T20 सीरीज है टेस्ट में मैं एफएस से बात करूंगा। तो क्या कहते हैं इसको, किस नजर से देखते हैं?
1: देखिए राणा साहब, बहुत ज्यादा जरूरी है पाकिस्तान के लिए खासतौर पर T20 सीरीज में अच्छा परफॉर्म करना, क्योंकि पिछले काफी अरसे से पाकिस्तान की टीम स्पेशली वनडे क्रिकेट में, और टेस्ट मैच में तो है ही, वनडे क्रिकेट में भी पाकिस्तान का जो ग्राफ है वो बड़ा तेजी से नीचे गया है। और लास्ट टाइम जिस तरह आपने मेंशन किया श्रीलंका के साथ जब सीरीज हुई थी 1-1, तो पाकिस्तान की टीम शिकस्त सामना करना पड़ा था, तो यहां पर कंडीशंस भी पाकिस्तान को फेवर करेंगी और बहुत सारी और जो ऐसे नकात हैं जो पाकिस्तान के फेवर में होंगे, यहां पर परफॉर्मेंस देना बहुत जरूरी है, स्पेशली जो आपके सीनियर प्लेयर्स हैं जो बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जिनको आपने बहुत हाईली रेट किया हुआ है, उनको परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। और फिर इंग्लैंड के खिलाफ जब ट्राई सीरीज होगी श्रीलंका इंग्लैंड और पाकिस्तान के, उसके लिए पाकिस्तान का ये सीरीज जीत कर उस सीरीज में जाना बहुत जरूरी है। अगर आप यहां पर भी हार जाएंगे फिर जाहिर सी बात है आपका मोराल जो है वो अगली बड़ी सीरीज के लिए बहुत नीचे रहेगा। फिर इंग्लैंड जैसी टीम जो इस वक्त अपने पीक पे है, अपने रूज पर है, बहुत शानदार खिलाड़ी हैं उनके पास, तो आपको उनसे लड़ने के लिए, उनसे मुकाबला करने के लिए स्पेशली कॉन्फिडेंस आपका बहुत हाई होना, तो मैं तो यही समझता हूं कि पाकिस्तान को 3-0 से ये सीरीज जीतनी है।
0: यकीनन हम सब भी उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान इस सीरीज को जरूर जो है वो 3-2 से अपने नाम करे। एफएस ब्रेक में जाने से पहले हमारे पास 3 मिनट का कोई वक्त बाकी है, टेस्ट सीरीज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान क्या देखते हैं, पाकिस्तान को टेस्ट में क्या करना चाहिए? वो लीथल बॉलर नजर नहीं आते जो रन थ्रू कर जाए किसी टीम की बैटिंग को, स्पिनर्स पे हमने जब मिसबाह कैप्टन थे इन्हिसार के और उन्होंने परफॉर्म भी किया, और उनके साथ चाहे उमर गुल थे, जुनैद खान थे और भी जो पेसर्स आते गए वो परफॉर्म करते रहे और पाकिस्तान जीता रहा और टेस्ट में नंबर 1 भी बना, थोड़े वक्त के लिए बना मिसबा की कप्तानी में। अब उस खोए हुए मयार को लाने के लिए क्या करना चाहिए? थोड़ी सी प्रॉब्लम चलती रहती है कि स्पिनर्स से स्पिन विकेट बना ली जाए, वो कर लिया जाए, वो करे, बट नथिंग इज वर्किंग इन अवर वे। ये स्पिन बनाकर भी मुल्तान में वेस्ट इंडीज से हार गए।
2: जी हाँ, लेकिन यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि जो नेक्स्ट मंथ सीरीज होने जा रही है दो टेस्ट मैचों की श्रीलंका के अगेंस्ट, एक टेस्ट जो है वो 9 को है और दूसरा 17 को, तो उसमें आई थिंक शायद हम जीत भी जाएं स्पिन विकेट्स बना के, साजिद खान एंड ऑल द स्पिनर्स मे जस्ट कम इन टू प्ले, नुमान अली। और उसके अलावा जो हम चीजें लैक कर रहे हैं वो है हमारा एटीट्यूड, और टेस्ट के लिए हम मेंटली तौर पर तैयार नहीं है, हमारे प्लेयर्स का जो टेम्परामेंट है वो टेस्ट खेलने वाला नहीं है। अब देखिए मोहम्मद रिजवान बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड हैं साइड में, लेकिन आजकल जिस किस्म की बैटिंग कर रहे हैं, जितनी मायूस को उनकी बैटिंग वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड वाली सीरीज में देखने को मिली है, दैट वॉज जस्ट शेमफुल टू से द लीस्ट, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि मैंने डिफेंस किस तरह करना है। सीधी सीधी गेंदों को भी डिफेंस नहीं कर पा रहे थे, ऑफ द फ्रंट फुट बैक फुट कहाँ पे उन्होंने जाना है, आगे जाना है या पीछे जाना है, लेंथ पिक करना उनको भूल ही गया है, तो उनका फुटवर्क जो है वो बिल्कुल दिखाई नहीं दिया, बड़े ऑफ कलर दिखाई दिए हैं। और इमामुल हक जिनको हम बड़ा टेक्निकली स्ट्रांग समझते हैं और हाईली रेट भी करते हैं, मतवातर टेस्ट मैचेस जो है वो खेल रहे हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेज जो है वो भी सवालिया निशान है। एक दो अच्छी परफॉर्मेंसेज अब्दुल्ला शफीक के बल्ले से देखने को मिली हैं, लेकिन कंटिन्यूटी जो है वो लैक कर रही है, दैट इज द थिंग, कि कंटिन्यूसली उनको परफॉर्म करना चाहिए। बाबर आजम शेल में, आई डोंट नो व्हाई उनको शेल में होना नहीं चाहिए, जितनी अच्छी उनकी टेक्निक है, जितनी सलाहियत के मालिक है, वो सलाहियत अपनी दिखा नहीं पा रहे, खासतौर पर टेस्ट मैचेस में। सलमान अली आगा मुसलसल खेल तो रहे हैं, बट मे बी फ्यू वुड डिसएग्री, आई डोंट थिंक ही इज अ टेस्ट प्लेइंग मटेरियल। और उसके साथ साथ जो है रजाउल्ला हूं या एक दो और यंगस्टर्स जो है उन्होंने प्रॉमिस शो किया है, पर जो चीज आप कह रहे हैं कि बॉलिंग में वो कन्विक्शन, वो लीथलनेस, वो एंथुसियाज्म जो है वो नहीं दिखाई दे रहा, जहां पे हमें वर्क करने की जरूरत है, खासतौर पर फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में। हमारे शहीन शाह अफरीदी हैं, वो भी 4 ओवर्स के बॉलर रह गए, टेस्ट मैचेस में जो है वो लंबे स्पेल करने वाले दिन उनके गए हैं और उनकी पेस भी कम हुई है, तो ये चीजें जो है ये कंसिडरेशन में आएंगी और इन पे वर्क करने की जरूरत है और टाइम लगेगा चीजों को बेहतर होने में, अब टाइम लगेगा। जिस हद तक हम फ्लॉप हो चुके हैं टेस्ट मैचेस में, खासतौर पे टेस्ट क्रिकेट में, तो इसमें वापसी जो है वो यकीनन वक्त लेगी। ये इम्तहान है बोर्ड के लिए भी, प्लेयर्स के लिए भी, और थिंकिंग टैंक के लिए, कोचिंग के लिए, एवरीवन, क्योंकि इंटरेस्ट लेवल जो हमारे लोगों का है वो भी बहुत कम हुआ है बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस, द करंट परफॉर्मेंस ऑफ द टीम। कुछ थोड़ी सी उम्मीद नजर आई थी एक टेस्ट जब हम जीता था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, लेकिन उसके बाद जो परफॉर्मेंस हमने इंग्लैंड के खिलाफ दिखाई है वो बहुत मायूस कुन थी, और इतनी मायूस कुन थी कि आप ये देखें कि प्रिडिक्ट कर रहे थे लोग, स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे लोग कह रहे थे कि ये 3-0 होगा, पाकिस्तान आर नॉट द टीम दैट यूज टू बी 15-20 ईयर्स बिफोर। तो इस किस्म की तनकीद जब हो रही होती है तो दैट इज अ कंसर्निंग थिंग, और इस देखें वक्त लगेगा, जिस तरह मैं कह रहा हूं इस पे काम करने की हर एक को जरूरत है, और हर इंडिविजुअल जो है वो जब अपनी इस्लाह करेगा और कोशिश करेगा कि मे बी आई एम द वन हु नीड्स टू टेक द इनिशिएटिव, देन मे बी थिंग्स कैन गेट इन अ बेटर वे।
0: जी हाँ दोस्तों, अब देखना होगा कि चीजें बेहतर होती हैं कि नहीं, लेकिन जल्दी जल्दी हम जीए एफएम रेडियो नेटवर्क पर एक ब्रेक लेते हैं और बस फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड में। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।

0: FM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: हेल्थ इज वेल्थ, जहां माहिर डॉक्टर शेयर करते हैं सेहत की असली बात। GFM का हेल्थ अवेयरनेस शो, होस्ट आगा जब्बार के साथ, जहां मुल्क के मायानाज हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स सेहत से मुतल्लिक अहम टॉपिक्स पर अपना एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल राय और मुफीद मालूमात शेयर करते हैं। अपनी मेडिकल एक्सपर्टीज और हेल्थ केयर ब्रांड को हजारों लिसनर्स तक पहुंचाने के लिए हेल्थ इज वेल्थ का हिस्सा बनिए, हेल्थ एक्सपर्ट या प्रोग्राम स्पॉन्सर के तौर पर। स्पॉन्सरशिप के लिए आज ही राब्ता करें आगा जब्बार 03। हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: अरे मैं खुश और बीरोनो की स्किन हर इमेज लाइ छा डैमेज एंड डल स्किन के कयो आउट, पर यू किए तो के खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, जंहिं में आहिनि चार रंग जी खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन, जो जिल्द के रिस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे, ऐं चामरनि जी खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन्स ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे। सिर्फ 3 ॾींहनि में जिल्द खे बणाए नरम, मुलायम ऐं ब्राइट। उन सां गॾोगॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम, जंहिं जी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक खूबसूरती। हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल। सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम,

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमर सिंध जे सींद में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारी जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतन जे मखसूस बीमारियन, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी, औरतुन बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
7: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 8 PM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरतेहाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंडअप में। सिंध राउंडअप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GAFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
3: अस्सलाम वालेकुम सामईन, तां बुधो पिया GAFM नेटवर्क सिंध राउंडअप संगदे माया गुलाब खान बेण।

0: जो असल मयार ऐलान न पर उन ते अमल तराबत हूँ आए। कणक जो फायदो सारिफ तई पहुंचे, बोझ मुतासरन तई रकम ए सहूलतू पहुंचन, अस्पतालों में अमलो ए दवाओं मौजूद हुजन, सरकारी जमीनों बाबत नव निजाम शफाफ हुजे तो पोए उहे फैसला वाकई अवामी रिलीफ में तब्दील थी सकंदा। हाणे नजर उन ॻाल्हि ते हूंदी त सिंध हुकूमत उन्हनि फैसलनि खे कागज़नि मां कढी अमली मैदान में केतिरी तेज़ी शफ़ाफ़ियत ऐं जवाबदेही सां लागू करे थी। ही हुयो हिन वक़्त ताईं जो सिंध राउंडअप। ॿिए आचर जे सिंध राउंडअप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
3: अरे न, खुश्क ऐं बीरोनो थी स्किन, हाणे इन जे लाइ छा डैमेज ऐं डल स्किन खे कयो आउट? पर इहो कीअं? तोखे खपे सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, जंहिं में आहिनि 4 रंग जूं खूबियूं ऐं कोजिक एसिड फॉर्मुलेशन जो जिल्द खे रिस्टोर करे हुन जी नमी खे लॉक करे, ऐं 4 रंग जूं खूबियूं जिल्द मां फाइन लाइन ऐं झुरनि खे घटि कनि ऐं रिंकल्स खे घटि करे सिर्फ़ 3 ॾींहनि में। जिल्द खे बणाए नरम, मुलायम ऐं ब्राइट। उन सां गॾो गॾु सुपर वाइट ब्यूटी सीरम, जंहिं जी हर कतरे सां चेहरे खे मिले वधीक ख़ूबसूरती। हाणे हर ॾींहुं रहो ब्यूटीफुल। सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम, अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स।
2: जेकॾहिं तव्हां खे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 0312-34-01-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि? त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
5: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
8: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
9: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाए सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
5: मातली ऐं आस पास जी अवाम लाइ खुशखबरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
10: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
7: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
4: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए,
7: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
7: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलाइण लाए
4: असां जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
7: 0331-252-5786।
4: जी हाँ, 2315-5576।
7: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: रखे हो तो आवाज भी सिर की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

चेहरे बदलते रहे, जिंदगी वैसे ही चलती रही। दुनिया बदलती है फितरत है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। पलती रही दिल में उदासी, अंधेरों से लेके रोशनी तक, खामियों से खामोशियों तक, होश से लेके मदहोशियों तक। अफसोस नहीं के अफसाने लिखे, वो अफसाने मबनी है जिंदगी पर। खुदा तू देता है बेहिसाब, मेरे दर्द में थोड़ी तो कमी कर। लेना क्यों यहाँ अब गुलाब, क्यों रही बहार की कमी बस। किस्मत हमारे ही हाथ में है, उसे इख्तियार की है कमी बस। वो लोग भी गुजर गए, वो घर भी जल चुके, वहाँ कुछ नहीं वहाँ से अब दर्द उठे। सफर तो भरेंगे दोस्त, वक्त की मन में शिफा है, पर वक्त पे रहे मैं दोस्त, वो कब किसी के लिए रुका है। तेरा सर फैले ना हाथ, हमारे अब यही दुआ है। कभी कभी आए सोच, जो हुआ वो ठीक ही हुआ है। सबर से सबक जो मिले हैं, सबर से अब मेरी सुला है, कि कोई नहीं अगर तेरा तो मेरी जान।

एक मिनट रुकी, मेरा वेट कर। ओके देन जबी भाई टेक वन, कहा तो ना माफ कीजिएगा। शालीमार गार्डन में 5:30 बजे मेरा शूट के लिए हेयर एंड मेकअप, जल्दी मेरे शेड्स ला, लेकिन पहले चेक द पैरामीटर। गानों के बढ़ते डेसिबल, चेक पे बढ़ते डेसिबल, इट्स इनक्रेडिबल। मैं किस्मत दुखदाई, कैसे किस्मत भूल आई, आई थिंक अबाउट दिस दैट नाइट। Give a shot, give a shot, give a shot, give a instinct, animalistic, mad magician, yeah, mathematician, I never take second position, I'm getting ballistic, legalismic, billabulously, live who meticulously, drugs mere medicinal se, love kiya maine kalam se, sach bola maine kasam se, rang dekho kaise badalte, dikhte hain sabke, karke kab se, baatein pakki, baatein kacche, I've had enough of it, but I keep going, got no option but to keep flowing, keep the dark trick out of my zone, looking to keep up me off of my throne, but before I gotta go, let me tell you this. One thing I need you to know, if you ever need a friend, you can call my phone, 'cause you are not alone.

0: ये कोई नहीं अगर तेरा तो मेरी जान खुदा है।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फार्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतन जे मखसूस बीमारियन, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी, औरतुन बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं

0: MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे आई हर आचरते सुबह 10 वगे खां रात 10 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो आई बियन बीमारियन जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-94-295-244।
2: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
5: सुनते रहो GFM 90.4।
6: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
3: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
3: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
6: बस पो हाने खणो फोन ऐं पेंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 0331-252-5786।
3: जी हाँ, 3135-5786।
6: GFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: It's 9 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरतेहाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंडअप में। सिंध राउंडअप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GAFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
3: अस्सलाम वालेकुम सामईन, तां बुधो पिया GAFM नेटवर्क सिंध राउंडअप संगदे मां गुलाब खान भेण।

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां रात 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां रात 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आस पास जी अवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
7: सुनते रहो GFM 90.4।
5: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
8: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
5: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
8: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
5: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 0331-2525-786।
8: जी हा, 2318-2525-786।
5: GFM रेडियो नेटवर्क,
8: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं TFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम

0: जो बेहतरीन मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारी जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
0: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
1: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतन ए बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
2: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी
0: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए 2347-3241-230
3: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे याद रखंदा दायमी बुखार नज़लो जुकाम बदन में सूर बेचे कमजोरी मलेरिया मुद्दे जो बुखार टीबी बदहजमी मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे
4: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोया डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244
1: मातली आस पास की आवाम खुशखबरी मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हूंदी उहा बे ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं नोट असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 0313-086-3163
0: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
3: सुनते रहो GFM 90.4
2: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
0: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
0: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन
2: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 03125252786
0: जी हा 2315525786
2: GFM रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़

0: कलमा पढ़ो ते हिक भेरा देहर पढ़न बिया बल बल पढ़न दे यार सजन दी हूं दिसा को जुदाई मुस्लिम विचों काफर थीवन ए केरी हुंदी अदाई यार मुस्तफा जैसी जीवे एरी करे न अंधाई
1: अदा मजबूर आशिक के अंजा यार दोस्त रोकिन था त तू पहले मैं वो समरण न वन तुंजा दुश्मन तो के होते तुंजा वेरी बारे वजंदा अर्ज करे पियो मां मौत खाना थो रजा बराल महबूब जो दीदार जरूर करनो पोंदो मां त घणो पहले पान खे रोकिया पर छा करिया मुझे दिल न थी रहे।